नेशन के फन स्टेशन फन एशिया रेडियो पर 200 आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। You are listening to the Fun Asia Network broadcasting non-stop Bollywood entertainment here on 104.9 FM Fun Asia Radio and also on 104.1 FM Radio Caravan. More variety hai, more choices hai, aur more fun bhi hai, only under one network, which is Fun Asia's network. और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555। आज का शो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सोनू निगम पर। बहुत ही अच्छे अच्छे उनके मेलोडियस गाने सुने हमने फर्स्ट वन आवर ऑफ आवर शो में। तो चलिए अभी थोड़ी सी मस्ती मजाक हो जाता है और उनके बहुत ही मस्ती भरे एनर्जी भरे गाने हैं जो उन्होंने गाए हैं। तो चलिए उनको अभी थोड़ा सा मौका देते हैं और वो वाले गाने सुनते हैं। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू दिस ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी दिल मांगे मोर।

right, all right, all right. दोस्तों खाकी से सुन रहे थे आप ये गाना इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. अभी बारी आ चुकी है आप सभी को एक अच्छा सा गिव अवे देने की. सो दोस्तों इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लंच बफे दैट गोज बियॉन्ड द यूजुअल, फ्यूजन रिपब्लिक ऑलरेडी लव्ड इन रिचर्डसन इज नाउ ब्रिंगिंग इट्स फैबुलस फ्यूजन फ्लेवर्स टू अ ब्रांड न्यू लोकेशन इन अर्विंग. एंजॉय अ डिलीशियस 25 आइटम लंच बफे एवरी डे फीचरिंग चार्ट्स, तंदूर प्लेटर्स, एक्सॉटिक फ्लेवर्स एंड फेवरेट्स लाइक श्रीरागा सांबा मटन बिरयानी, एप्रिकॉट मलाई कोफ्ता, चिली पनीर भाव, burrata, chicken tikka and more. Dinner is available a la carte. Visit Fusion Republic at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors hai, fabulous fusion hai. तो आपके लिए फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार की तरफ से एक गिव अवे है. तो अगर आपने मेरे इस अगले सवाल का सही सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं वन फ्री गिव अवे श्री रागा सांबा और दम मटन बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी. जी हाँ, आपने अगर मेरे सवाल का सही सही जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं श्री रागा सांबा और मटन दम बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी. स्टूडियो का नंबर 9722355555. आपको मुझे ये बताना है कि ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो कौन सी मूवी का है. स्टूडियो का नंबर 9722355555. सही जवाब देने वाले को मिल सकता है फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन की तरफ से श्री रागा सांबा और मटन दम बिरयानी या फिर वेजिटेबल दम बिरयानी. आपको मुझे बताना है मूवी का नाम.

जी हाँ, आहा आहा आहा आ जी हाँ, ये आहा हो गया है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आए पर बिल्कुल सही जवाब नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि ये मूवी है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। भाई इस मूवी में ये जो गाना सुन रहे थे इसमें बद्री तो कॉमन था, बट उनकी दुल्हनिया कोई और थी। और सही जवाब जिन्होंने मुझे दिया है उनका नाम है संजय जी, और संजय जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस मूवी का नाम था सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। सो तालियां संजय जी के लिए। जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गया है और संजय जी ले चुके हैं फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन गिव अवे की तरफ से ये गिव अवे, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो नया वर्जन ऑफ बिजुरिया, जी हाँ, जो पुराने गाने में नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना ऐसे ही निखर के बाहर आता है, और ये कमाल करते हैं आज के ज़माने में तनिष्क बागची साहब जी। तो तनिष्क बागची ने ये कमाल किया है इस गाने के साथ, विच इज़ कॉल्ड बिजुरिया, और इसको भी गाया है सोनू निगम जी ने ही। जी हाँ, और जो पुराना वाला बिजुरिया था वो भी सोनू निगम ने गाया था, बट ये नया वाला फ्लेवर जो है वो भी सोनू निगम ने गाया है। बट इट इज फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। विद दैट गिव अवे हो चुका है खत्म, सो कंग्रेचुलेशन संजय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉल्स। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं, बट गिव अवे किसी और, किसी एक को भी मिल सकता है। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो चलिए विद दैट लेकर चलती हूँ आपको इस धमाकेदार गाने की तरफ।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
10: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
11: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
12: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
10: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
12: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
13: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
14: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसी के साथ आपको लेकर चलती हूँ अगले धमाकेदार गाने की तरफ।
1: जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं उसकी शादी हो रही है।

मौसम मौसम मौसम, पुराने गाने में नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना ऐसे ही निखर के बाहर आता है और ये गाना भी पुराने गाने से ही इंस्पायर होके बाहर आया है। वेल, आप सभी को एक खुशखबरी की बात बता देती हूँ कि आपके लिए और एक गिव अवे लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज सब्र कीजिए और सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। अगले गाने पे जाने से पहले आपको बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा। इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार, ट्रक और स्लीप एंड अ फॉल एक्सीडेंट, फोकस ऑन हीलिंग while attorney Omar fights for you and you pay nothing unless he wins. You can call them. The number to call is 469-300-5046 or you can visit their website which is attorneyomar.com.

दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटेक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. यू कैन कॉल देम. द नंबर टू कॉल इज 4699429888 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट व्हिच इज agfintechs.com.

दोस्ताना मूवी से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना सुनिधि चौहान और विशाल दादलानी के आवाज में। जैसे कि आपको कहा था वादे के मुताबिक आपके लिए लेकर आने वाली हूँ एक गिव अवे। भाई सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। गिव अवे आएगा, उसके पहले ये बता देती हूँ आप सभी को दैट इफ यू डोंट हैव एनी इंश्योरेंस और पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क, गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर। यू कैन कॉल और टेक्स्ट देम। द नंबर टू कॉल और टेक्स्ट इज 214-666-6259 or you can visit their website which is passionhealthphysicians.com. This program is not health insurance, so eligibility restrictions will get applied.

All right. Frisco, get ready for a royal feast. The popular Birista House from Denton is now in Frisco by Prism Bar and Grill. Enjoy authentic Hyderabadi biryani, North Indian favorites, delicious desserts, and more. Bring your family and friends to 6377 Custer Road, Frisco, Texas, and make it a feast to remember. और अभी इसी के साथ बिरिस्ता हाउस की तरफ से आपके लिए एक गिव अवे लेकर आई हूँ। जी हाँ, अगर आपने मेरे सवाल का सही सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं अ चांस टू विन $20 गिफ्ट कूपन फॉर डाइनिंग ओनली। जी हाँ, बिरिस्ता हाउस की तरफ से $20 का गिफ्ट कूपन आपको डाइनिंग ओनली के लिए आप जीत सकते हैं अगर आपने मेरे सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब दिया तो। तो आपको मुझे बस इतना बताना है कि ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ इसमें शाहरुख खान है। जी हाँ, शाहरुख खान है और इनके साथ कई सारी हीरोइंस डांस कर रही है, तो आपको मुझे एटलीस्ट 3 हीरोइंस के नाम बताने हैं जो शाहरुख के साथ इस गाने में डांस करती है। आपको मुझे ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ उसमें शाहरुख के साथ कई सारी हीरोइंस डांस करती है, कई सारी हीरोइंस फीचर हुई है इस गाने में, तो आपको मुझे सिर्फ 3 हीरोइंस के नाम बताने हैं। तो सही जवाब जिन्होंने मुझे दिया वो जीत सकते हैं $20 का गिफ्ट कूपन फॉर डाइन इन ओनली फ्रॉम बिरिस्ता हाउस। स्टूडियो का नंबर 9722355555 3 हीरोइंस के नाम बताने हैं जो कि शाहरुख के साथ इस गाने में फीचर्ड हुए हैं।

0: जो हीरोइंस इस गाने में शाहरुख के साथ फीचर्ड हुई है उनके नाम है काजोल रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, लारा दत्ता और बिपाशा बासु। और जिन्होंने मुझे सही सही जवाब दिया है उनका नाम है नीलांग जी। तो जी हाँ, जीत लिया है नीलांग ने ये गिव अवे फ्रॉम बिरिस्ता और उन्होंने बिल्कुल थ्री नाम बिल्कुल सही सही बताए थे इस गाने में शाहरुख के साथ जो फीचर्ड हुए हैं उन हीरोइंस के। वेल ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 57 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, दोस्तों, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डॉलर्स एंड हैव अ ब्यूटिफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड। बाय बाय एंड गुड नाइट।
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
3: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax,
2: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा,
3: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
5: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
6: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Hello? मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
13: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
12: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
13: वो पता नहीं।
6: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
12: Ab hui na smart marketing.
6: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers.
14: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
15: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
16: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
16: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
15: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन।
3: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट, वेयर कैन वी ईट नाउ?
2: डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज फन पिज्जा किचन फ्रिस्को।
4: फन पिज्जा किचन फ्रिस्को विल बी open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा ज़ाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा ज़ाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
6: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
7: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM to 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200 प्लस प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माय स्क्वायर फीट।
9: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
11: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
5: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
8: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
11: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, Fun Asia पर ही आते हैं.

0: घर बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
7: बिंदास बोलो बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो,
8: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फन एशिया रेडियो पर।
9: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इन टू फन एशिया रेडियो।

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Here we go.
1: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.

0: लिए पक्की है ना, महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब उनका सर वो नेपाल में और दरिया रह गया।
1: जय साहब,
2: जय
0: सृष्टि के। 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी।

0: इधर अपना इलाका है, चाय पानी बहुत से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़ेगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे आपसे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
0: शाम को मिलता हूँ,
2: मेहरबानी करके कुछ कमा के घर भी ले आना, सब यात्रियों पे लुटा के मत।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up।
2: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। He's wrong। Watch me।

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
3: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
6: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: कितने आदमी थे?
2: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं। मैं भी उसे दिया हूँ किस्मत के आरे रुके रुको तुकी राह में उठू पिछले तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर तुझमें जितना है जोर तू लगा ले मगर

And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
2: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
1: Miss Clicks?
3: 100 लोगों ने click भी किया.
1: Customers कितने आए?
4: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
3: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो।
1: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ अनीशा रेडियो पर।
5: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फनीशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Hello, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
4: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
3: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
4: वो पता नहीं।
5: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। Introducing SmartReach AI, powered by real foot traffic attribution. With SmartReach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
3: Ab hui na smart marketing.
5: Visit SmartReachAI.us. SmartReach AI, turn attention into customers.
6: SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

favorite music on your favorite radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर? वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस। इफ यू आर बिटवीन 25 एंड 40 विद एक्सपीरियंस in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: आनंद लगे रहो।
1: I love you।
2: आनंद का फोन आया यार।
0: और
2: चल चल।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

Bringing South Asia closer, more closer. Funasia, 104.9 FM.

0: Masti Magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: That's right. Pump it up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey, Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: आज ही सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
17: We need to talk.
18: अब क्या हुआ?
17: Nothing. It's not you.
18: Oh no.
17: It's the distance.
18: Distance? We live 10 minutes apart.
17: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
11: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
19: Ye tara, wo tara, har tara.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट ताराएनर्जी.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
20: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
21: Ladies and gentlemen, welcome to the show and let's get this week started. And this is going to be an important week because we are going to change the month in the middle of the week. We're going to change the weather also in the middle of the week. Welcome to the show. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai, chaand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
2: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
3: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
4: डील कहाँ?
3: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
1: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
5: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
0: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Anisha Radio par.

0: Several of the City of Dallas non-emergency offices as well as public facilities, ladies and gentlemen, are closed today for a scheduled employee furlough day, which is aimed at addressing a $30 million budget shortfall in the City of Dallas. And these are closed today, and they are unpaid forced holiday or furlough day, as they are calling it, for many of the City of Dallas employees. Park and recreations, libraries, code compliance, city hall lobbies, arts and culture community centers, but emergency services, police, fire rescue, sanitation operations all continue their regular schedules. Dallas Love Field Airport is, of course, operating as a normal, continuous water, wastewater, and stormwater operations unaffected. Telephone customer service remains available, and online water bill payments, permit submissions, and non-emergency requests also remain fully operational. You can check out the website for more details if you are in the City of Dallas.
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्ट. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
3: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ NCR ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 AM ರಾತ್ರಿ 8:00 PM. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
4: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: भूख लगी जोरों की
11: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
14: अरे यार, घर मिल गया.
15: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
13: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
15: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
13: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
16: Order, Mr. Impressions, campaign का result.
17: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
16: Miss Clicks?
18: 100 लोगों ने click भी किया.
16: Customers कितने आए?
19: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
4: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
2: सर बढ़िया है, 50,000 इम्प्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
1: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
2: वो पता नहीं।
3: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाई रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो। मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स।
1: अब हुई ना स्मार्ट मार्केटिंग।
3: विजिट smartreachai.us। स्मार्ट रीच AI, टर्न अटेंशन इनटू कस्टमर्स।
4: स्मार्ट रीच AI, अ पैन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट।
5: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
3: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
6: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
7: It's the time to clock out.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
9: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

0: Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
8: Pansyat, straight from the heart. Gal Hindi Hindi bol.
9: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
10: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
8: Phone uthaye, number dabaye.
9: 347-449-4242.
11: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
11: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
11: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
13: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
15: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
16: Hello, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
17: सर बढ़िया है, 50,000 impressions, 5,000 views और hundreds of clicks.
16: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
17: वो पता नहीं।
15: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
16: Ab hui na smart marketing.
15: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
18: Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
1: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
2: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: बेटा 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
11: सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
13: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
12: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
15: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।

एक लड़की भीगी भागी सी चलती का नाम गाड़ी फिल्म से लिया गया। ये गाना सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज में और ये पिक्चराइज भी उन्हीं पे किया गया था। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। एंड यस, आई एम श्योर यू सरप्राइज टू हियर मी ऑन दिस डे ऑफ द वीक एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे। वेल, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग टुडे एंड आई होप कि आज का ये सावन स्पेशल आपको पसंद आएगा। दैट्स माई प्लान। आई एम गोइंग टू कीप यू एंटरटेन्ड टिल 12:30 PM एंड ट्राई माई बेस्ट टू प्ले सम ऑफ द बेस्ट रेन day songs to add a little sunshine to this otherwise dreary day. 26 minutes past 10 on this 28th of September 2026. उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। आज के इस सेगमेंट को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है तारा कमर्शियल एनर्जी ने, स्पेशली फॉर टेक्सास बिजनेस ओनर्स। याद रखिए, तारा एनर्जी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी since 2002, especially when it comes to business owners, because they have the most competitive rates, reliable service and customized energy plans. So bas phir call kijiye 844-428-2808 and start saving on your electric bill. You can also visit taraenergy.com.

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप फिल्म प्यासा सावन से लिया गया ये गाना। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग दिस सावन स्पेशल ऑन 104.9 एफएम। फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल छाए हुए हैं। 79 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द करंट टेम्परेचर। टुडेज हाई इज एक्सपेक्टेड टू बी 90 एंड अ लो ऑफ 72 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इट्स 53 मिनट्स पास्ट 10। आई नो अभी लंच का टाइम तो नहीं हुआ, बट इफ़ यू वर कॉन्टेम्प्लेटिंग कि आज खाना कहाँ खाना चाहिए, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इन गार्लैंड इज अ ग्रेट प्लेस टू चेक आउट। वेदर यू आर इन द मूड फॉर चिकन बिरयानी या बटर चिकन, पनीर टिक्का या दाल मखनी, यू विल फाइंड इट ऑल एट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। प्लस दे हैव ए डेली हैप्पी आवर, जी हाँ, मंडे थ्रू थर्सडे फ्रॉम 5 to 8 PM। ऑर्डर एनी टू एंट्रीज and you receive one complimentary appetizer. A great deal being offered by Tandoori Flame Restaurant. You can visit tandooriflametx.com for details.

सावन के झूले पड़े लता जी की आवाज में राखी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना सुन रहे थे आप हमारी इस सावन स्पेशल में. आई होप यू आर एंजॉयिंग माय सॉन्ग सिलेक्शन फॉर टुडे. हियर इज अनदर रेनी डे सॉन्ग दैट आई होप यू विल लाइक.

0: planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
9: लैपटॉप में।
8: इन्वेस्टमेंट?
9: गूगल ड्राइव।
8: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
9: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
8: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
10: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
11: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
10: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
12: It's the time to clock out.
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
14: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
15: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

गया ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप, और ये पिक्चराइज किया गया था सनी देओल और अमृता सिंह पर. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू सावन स्पेशल ऑन 104.9 FM.

हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। मौसम का हम पर बहुत इम्पैक्ट होता है, और स्पेशली अगर मौसम अच्छा हो तो घूमने फिरने का और मस्ती करने का मूड होता है, और ऐसे में अगर काम करना पड़े तो दिल नहीं लगता काम में। खैर, हमारा तो काम ही इतना अच्छा है कि दिल लग जाता है। थैंक यू सो मच। इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनाद, सब्स्टिट्यूटिंग टुडे बिटवीन 10 and 12:30 PM एंड हेंस होस्टिंग द सावन स्पेशल ऑन 104.9 FM। जीनत अमान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। Now, before I move on to the next track, really quickly want to tell you about Passion Health Primary Care. I know it's important to have health insurance, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास insurance नहीं होती, either उनकी company offer नहीं करती, or they can just maybe perhaps not be able to afford it. Well, in that case, you can still visit Passion Health Primary Care because they have a special offer for you. Even if you are out of network with them, they have a special program which is $85 a month, which offers primary care, preventative care, medication management, telehealth and so much more. Now, ये एक health insurance program नहीं है, but it's a special program which can at least get you some basic coverage at Passion Health Primary Care. आप call करके details ले सकते हैं 214-666-6259 or by visiting their website which is passionhealthphysicians.com. Certain restrictions do apply and yaad rakhiye, they have locations in Irving as well as in Frisco, which is open on Saturdays and Sundays as well. Aiye ab chalte hain 80s ke ek aur shokh aur chanchal geet ki taraf. Are, are, na, na, na, na, na, na.

हलाल फिल्म से लिया गया ये गाना अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर पिक्चराइज किया गया था। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले जी के। वैसे तो हम रिक्वेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन पंकज ने जिस गाने की फरमाइश की वो बहुत ही प्यारा है और हमारी थीम के साथ बिल्कुल फिट बैठता है।

लम्हे फिल्म से लिया गया ये गाना श्रीदेवी पर पिक्चराइज किया गया था, आवाज लता मंगेशकर। You're listening to the Sawan special on 104.9 FM.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सब थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
5: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
6: कितनी लंबी लिस्ट है?
5: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
6: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
7: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
8: Wait a minute. Who are you?
9: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
12: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
13: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
16: वी नीड टू टॉक।
17: अब क्या हुआ?
16: Nothing. It's not you.
17: Oh no.
16: It's the distance.
17: Distance? We live 10 minutes apart.
16: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
12: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
18: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
19: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
18: Miss Clicks?
20: 100 logon ne click bhi kiya.
18: Customers kitne aaye?
21: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
20: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smartreach AI, turn attention into customers. Smartreach AI, a Fun Asia Network product.

अलका याग्निक और लेट्स सी, नहीं नॉट अलका याग्निक, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म यलगार, पार्ट ऑफ आ स्पेशल सावन सेगमेंट. आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑल द ग्रेट सॉन्ग्स आई हैव प्लेड सिंस 10 AM. इट इज 41 मिनट्स पास्ट 11 ऑन दिस 28th of September 2026. मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर रमिता. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द ग्रेट सेलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स आई हैव प्लेड फॉर यू सो फार, ऑफ कोर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू सावन. और अब वक्त हुआ है एक गिव अवे का. आपके लिए मौका है $10 गिफ्ट कार्ड विन करने का फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सवाल पूछने वाली हूं मैं आपसे. जो अगला गाना प्ले करने जा रही हूं, आई नीड टू नो द नेम ऑफ द एक्टर्स. जो एक्टर्स इस गाने में हैं, एज इन नॉट मूवी में, और से ध्यान से सुनिए. ये गाना एक फिल्म से लिया गया है. फिल्म में 2-3-4 जो भी एक्टर्स हैं, राइट, there could be multiple actors, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इस गाने से restricted है. बताइए इस गाने में कौन है दो actors, as in hero और heroine. गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए. आवाज है इस गीत में सुरेश वाडेकर की. And if you have the correct answer, give me a call. 972-235-5555. That's 972-235-5555.

लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। चांदनी फिल्म का ये गाना सुरेश वाडेकर की आवाज में सुन रहे थे आप, और ये गाना पिक्चराइज किया गया था विनोद खन्ना एज वेल एज जूही चावला पर, एंड ऑफ कोर्स साइड में दिखाई दी जा रही थी श्रीदेवी एज वेल। द सॉन्ग वॉज नॉट अबाउट हर, इट वॉज रियली अबाउट विनोद खन्नाज मेमोरी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड हु पास्ड अवे, विच वॉज जूही चावला। सो इफ दैट्स वॉट यू वर thinking, you were correct. Shweta was the first one to give me the correct answer. Congratulations, Shweta. Aapne win kiya $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Aaiye continue karte hain Savan Special with this next track by Adnan Sami Khan.

0: नेकलेस, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
1: ये क्या होता?
2: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
8: तारीख पर तारीख।
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
14: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।

लगान फिल्म से लिया गया ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसना, टुडे सब्स्टिट्यूटिंग एंड फिलिंग इन फॉर रमिता। आज सुना आपने सावन स्पेशल ऑन 104.9 FM। आई होप यू एंजॉयड द सिलेक्शन। आई स्टार्टेड विद ओल्डीज और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमार ख्वाजा। अगर आपका कोई गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट होता है या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट होता है जिसमें आप इन्वॉल्व्ड हैं, इफ यू नीड एन अटर्नी ऑन योर साइड, ट्रस्ट अटर्नी ओमार ख्वाजा। ही नोज हाउ टू डील विद दीज इंश्योरेंस कंपनीज एंड गेट यू द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व। कॉल 469-300-5046 और विजिट attorneyomar.com।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

ऐश्वर्या राय पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म गुरु से लिया गया था। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इट्स 15 मिनट्स पास 12 ऑन दिस 28th ऑफ सितंबर 2026 एंड आई एम फिलिंग इन आई बिलीव फॉर रिमिता एंड आई गेस रिमिता वाज फिलिंग इन फॉर मी टू। खैर जो भी है मैं सब्स्टिट्यूट की सब्स्टिट्यूट हूँ आज के इस शो में, लेकिन आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु कॉल्ड इन विद देयर स्वीट फीडबैक एंड कॉमेंट्स एंड थॉटफुल रिमार्क्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का एंड आपकी लिसनरशिप की मैं बेहद मशकूर हूँ। ऑलराइट लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू आवर सावन स्पेशल। चलते हैं बी पराग के इस गाने की तरफ।

कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप 1942 लव स्टोरी से लिया गया ये गाना। वेल, हमारी लव स्टोरी एटलीस्ट आज के लिए यहाँ ख़त्म होती है। आई होप कि आपने इस सावन स्पेशल को एंजॉय किया। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आई वाज ओनली सब्स्टिट्यूटिंग फॉर रमिता हु वाज सब्स्टिट्यूटिंग फॉर मिठू। सो मैं सब्स्टिट्यूट की सब्स्टिट्यूट थी, यानी कि जिसे मजाक में शोरबे का शोरबा कहा जाता है। इट इज़ 6 minutes past 12। आपका और हमारा आज का बस इतना ही साथ था। पर अगर आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आया या प्रोग्राम पसंद आया तो सैटरडे और संडे को आप ट्यून इन कर सकते हैं बिटवीन 3 and 6 PM। दिस इज अमरीन हसना। तब आज के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द प्रोग्राम एंड यू विल हैव एन अमेजिंग रेस्ट ऑफ द डे। द लास्ट एंड द फाइनल सॉन्ग ऑफ सावन स्पेशल। दिस इज अमरीन हसना साइनिंग ऑफ।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
14: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
15: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Gro Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gro Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
16: Hello, namaste and good afternoon, Dallas. This is your radio host, Ayushi. और हफ्ते का पहला दिन और हम पहुंच गए हैं स्टूडियो आपको एंटरटेन करने, बिकॉज भाई हमारे हफ्ते की शुरुआत तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिसनर्स के साथ होती है. द डे स्टार्ट स्लो बट द मोटिवेशन टू कम डाउन टू द स्टूडियो एंड डू समथिंग डिफरेंट, हर दिन यही मोटिवेशन होता है लाइफ का. तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नंबर से.

ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी छछोरे और ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत रोमांटिक नंबर्स, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ नए रोमांटिक नंबर्स जो कि पिछले 5 सालों में शायद ऐसे ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर के आऊँगी, जो रिलीज हुए हैं और जो हमारे फेवरेट रहे हैं और हमारे फ़ोन पे जो बजते रहे, क्योंकि हम 90s वालों के लिए इस दौर के रोमांटिक नंबर्स को पसंद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने आते हैं तो हम खो जाते हैं। उनमें से एक फेवरेट ट्रैक मेरा मैं अभी आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, टेकिंग दिस वीक, स्टार्टिंग दिस वीक विद सम ब्यूटिफुल रोमांटिक नंबर्स फ्रॉम मे बी 2020 टू 2025 जो भी रिलीज हुए हैं। अगर आप भी मेरे इस सफ़र में जुड़ना चाहते हैं और कुछ ऐसे ही प्यारे रोमांटिक नंबर्स सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के, तो ज़रूर कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर जो कि है 972-235-5555। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर, मैंने क्या बोला 104.9 FM, पॉइंट का टी चला गया अंदर। सो यस, यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी ऑन फन एशिया 104.9 FM। बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत गानों के सफर में।

अरिजीत सिंह की आवाज, प्रीतम दा का म्यूजिक और बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म ब्रह्मास्त्र से। ये गाना वो है जो सुन के ना मेरी बेटी सोया करती थी। दैट वाज अ लोरी फॉर हर एंड दैट इज व्हाई आई कॉल हर अ बॉलीवुड बेबी, बिकॉज ऑब्वियसली आरजे मम्मा की बेटी है तो बॉलीवुड गानों के साथ ही बड़ी होगी डेफिनेटली। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, गानों की फरमाइश आना शुरू हो गई है और हम प्ले करेंगे। आज हम कुछ प्यारे खूबसूरत बिल्कुल नए रिसेंट वाले रोमांटिक नंबर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। शो को आगे बढ़ाने के पहले आपको बता दें कि आपके सपनों का घर ना आपके बहुत ही करीब है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा करीब है। और ड्रीम होम मॉर्गेज इसके लिए आपको हेल्प करेगा। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफिनेंसिंग। कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम्स होम ड्रीम होम्स हैपन। तो इनको कॉल करिए और अपने सपनों के घर से एक कदम और करीब हो जाइए। ये रहा एक और प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

अगेन अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, इनका ही ये इनकी जुगलबंदी है, इनके गाने हैं. एंड नाउ आई थिंक व्हाई, यू नो, जब अरिजीत ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था बॉलीवुड से, फिल्मी गानों से, तो कितनों का दिल टूटा होगा, क्योंकि ना ये जनरेशन जो पिछले यू नो 10-12 साल से सिर्फ और सिर्फ अरिजीत को सुन रहा है, एंड व्हेन दे दिल थिंक ऑफ अ लव सॉन्ग, कहाँ है वो आवाज़? भले ही नहीं, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब जा रही हैं, जगह बना रही हैं, पर जिस तरह से अरिजीत ने जगह बना के रखी हुई है, हु इज गोना बी दैट? बहुत ही यू नो सैड न्यूज़ थी हमारे लिए कि अरिजीत रिटायरमेंट ले रहे हैं. ऑब्वियसली उनके गाने हैं, हम सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे हमेशा, बट वी वॉन्टेड टू लिसन हिम मोर इन द बॉलीवुड फिल्म. ये आवाज़ ना सबके दिलों में बस गई है पिछले कुछ सालों में. अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ अरिजीत. मैंने प्लान करके नहीं रखा है कि अरिजीत के गाने ही प्ले करूँगी, बट यू नो अगर मैं बॉलीवुड में रोमांटिक नंबर्स की बात करूँ पिछले कई कुछ सालों में, सिर्फ और सिर्फ अरिजीत हैं जिसने हर फिल्म में हर गाने को ना बहुत ही खूबसूरती से निभाया है. सो अनदर ट्रैक, अ वेरी ब्यूटीफुल लव नंबर फ्रॉम फिल्म भेड़िया, और ऑब्वियसली आवाज़ है अरिजीत की.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. And yes, today we are playing some beautiful tracks. मतलब सोचा नहीं था कि सारे ट्रैक अरिजीत की आवाज़ में निकलेंगे, बट जितने भी गाने लाइन अप करके रखे हैं मैंने, येस राइट नाउ इट्स जस्ट अरिजीत सिंह प्लेइंग. और मुझे लगता है हर गाने में ना इनकी आवाज़ कुछ अलग ही अलग लगती है ना, लगता ही नहीं है कि सेम बंदा वही गाने गा रहा है. मतलब वही नहीं, मतलब सेम बंदा गाने गा रहा है. आई डोंट नो, दिस वॉइस हैज़ सम मैजिक. एंड सिर्फ और सिर्फ इनके गाने सुन रहे हैं फिलहाल हम, क्योंकि अगले गाने की जो फरमाइश आई है ना वो भी अरिजीत की आवाज़ में है. सो हियर इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी लूडो. इन्जॉय करिए इसको और सुनते रहिए फनी से अपनी होस्ट आयुषी के साथ 104.9 FM पे. कहीं नहीं जाना है भैया आपको.

0: So wasn't that a beautiful track from the movie Ludo? और ऐसे ही कुछ प्यारे खूबसूरत गानों का सफर चल रहा है फनी शो 104.9 FM पे और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। भाई देखिए फिलहाल हम ना बिल्कुल रीसेंट वाले जो मतलब पिछले 4-5 साल में ना मूवीज आई हैं उनके रोमांटिक नंबर्स आज लेकर के आए हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि यार तुम 90s के गाने बहुत बजाती हो। मैं इसलिए क्योंकि भाई 90s के गानों में ना वो मज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ प्यारे रोमांटिक नंबर्स नहीं बने हैं। और मैं ना बड़ी ही ऐसे इसी तरह के जो प्यारे प्यारे गाने हैं ना उसकी ही शौकीन हूँ, क्योंकि भैया फास्ट ट्रैक बस फ्राइडे को चाहिए हमको, जहाँ पे हमको पार्टी करना है। और जैसे डैलस वालों को तो पता ही है कि हम लोग वो लोग हैं जो मतलब धमाकेदार पार्टियाँ कर सकते हैं फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे भी, और उसके बाद सारी थकान और ऊ आह वाली कमर दर्द के साथ भी हम पहुँच जाते हैं ऑफिस बस अपनी दिहाड़ी कमाने। तो हम भी उसी में से हैं जो हफ्ते के 2 दिन, मतलब हर हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते 2 दिन यहाँ वहाँ घूमने और पार्टी करने के बाद पहुँच गए हैं स्टूडियो में, और आज बिल्कुल अपनी ब्लैक कॉफ़ी साथ में रख ली है और इन्जॉय कर रहे हैं ये प्यारे नंबर्स, ये खूबसूरत गाने जो बने हैं, मतलब जो रोमांटिक गाने बने हैं पिछले कुछ सालों में। बस वही ढूंढ के लाई हूँ, मेहनत की है यार मैंने, सारे अच्छे नंबर्स ला रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा हो। फिलहाल आप कोई फरमाइश देना चाहें तो स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। बस ध्यान ये रखिएगा कि थोड़े वाले रीसेंट वाले नए वाले गाने हों और वो रोमांटिक नंबर्स हों। मंडे ऐसा ही होना चाहिए, स्लो बट स्पेशल। हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से जाके वापस आते हैं।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
4: Oh... उमर ख्वाजा।
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
9: Wait a minute. Who are you?
6: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in.

0: In Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
2: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
5: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Funasia Radio.
6: FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
7: Non-stop entertainment on Fun Asia 104.9 FM और आपकी होस्ट आयुष आपका स्वागत कर रही है अपने अगले सेगमेंट में, जो कि पुराने वाले सेगमेंट की तरह ही है बिल्कुल. और वही गाने हम आपको सुनाएंगे, मतलब वही नहीं, बिल्कुल रोमांटिक नंबर्स जो अभी कुछ दिन पहले आए हैं वो आपको सुना रहे हैं. बिकॉज़ फरमाइशें आने लगी है यार, आप लोग मेरे साथ ना हमेशा साथ देते हो और शो को और इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बनाते हो अपनी फरमाइशों के साथ. तो बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने चल रहे हैं फिलहाल फनेशा 104.9 FM पे. स्टूडियो का नंबर आपको पता है, नहीं पता तो फिर से सुन लीजिए, 9722355555 है हमारे स्टूडियो का नंबर. कॉल करिए और कॉल करके अपने पसंद के गाने प्ले करवाइए. सोच क्या रहे हैं, मतलब अगर थके हुए हैं, हैंगओवर में हैं, या फिर डांस कर करके थक गए हैं, खूब अच्छे से वीकेंड एंजॉय किया है, फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बस सुनते रहिए ये प्यारे खूबसूरत गाने. साथ में चाय का प्याला या फिर कॉफी का मग ले लीजिए और एंजॉय करिए प्यारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ फनेशा पर आपके होस्ट आयुषी के साथ.
8: तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है?
7: मुझे भी लगती है इनकी स्माइल क्यूट. आपको लगती है सिद्धार्थ की स्माइल क्यूट? झनका

Here was this beautiful track from Param Sundari, Siddharth Malhotra और जानवी कपूर हैं इस गाने में. एक और खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ मैं, जो कि है शाहरुख की फिल्म से. जी हाँ, लेकिन उस गाने के पहले आपको दे दें कुछ जरूरी जानकारी. और जानकारी कुछ इस प्रकार से है that for 13 years Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Now they're growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lunoxy Medical. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lunoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan MedSpa services, all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, new appointments needed. तो चलिए आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं. शाहरुख, मतलब ये 90s में भी रोमांस कर रहे थे, 2000s में भी कर रहे थे, और मतलब 2000 से लेकर 2010 तक कर रहे थे, 2010 से 2020 तक कर रहे थे, मतलब ये अभी भी कर ही रहे हैं. और इनके रोमांस से ना कोई बोर नहीं हुआ है, इनके रोमांटिक गानों से कोई बोर नहीं हुआ है, इनकी फिल्मों से कोई बोर नहीं हुआ है. तो आप भी मेरी तरह शाहरुख के फ़ैन हैं और शाहरुख को और देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, पर क्या अभी भी आपको शाहरुख को रोमांटिक हीरो वाले रोल्स में देखना है या कुछ नया देखना चाहते हैं? टू ऑल द शाहरुख फैंस आउट देयर, दिस वन्स फॉर यू.

दैट वॉज शाहरुख खान जवान का ये गाना आपके लिए लेकर के आए थे आपके होस्ट आयुषी, और फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल ना मैं एक अपने रेगुलर कॉलर हैं उनके लिए गाना बजाना चाहूँगी, प्ले करना चाहूँगी, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मेरे थीम के कारण ना मैं उनकी रिक्वेस्ट नहीं प्ले कर पा रही हूँ, बिकॉज मतलब हर बार कुछ ना कुछ रहता है। कभी मैं सिर्फ रोमांटिक बजा रही होती हूँ, कुछ एकदम फास्ट ट्रैक बजा रही होती हूँ, बट मुझे पता है कि उनका फेवरेट गाना ये है, और दिस वन इज़ फॉर यू सफ़ी, ही कॉल्स एवरी डे एंड द सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू यू। लिसन टू दिस ब्यूटिफुल ट्रैक।

खाना मजेदार सा गाना, विकी कौशल और सारा अली खान है इस फिल्म में। फिल्म का नाम है जरा हटके जरा बचके। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। अब भैया आपको लेकर के जा रहे हैं ना कैसे गाने की तरफ, मतलब समझ लीजिए हमारे टोन से कि वो गाना कहाँ जा रहा है। आजकल ना एक नया ट्रेंड चला हुआ है, मतलब ऐसा हमको लग रहा है। अगर आप लोग भी अग्री करते हैं तो बताइएगा हमको फ़ोन करके स्टूडियो के नंबर पे, ठीक है। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हो ये रहा है ना कि बिहार बहुत ट्रेंड में है। एक दौर था जब बिहार को खाली गरियाया जाता था, और आजकल ऐसा समय आ गया है कि चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, वो बिहारी हों या ना हों, बिहार पे एक रील ज़रूर बनाते हैं। मोस्टली अच्छा, कभी कोई कांड हो जाता है तो ले लेते हैं बिहार की, वो बात अलग है। अगर आप उठा करके पॉडकास्ट सुने तो लोग बिहार की बात कर रहे होते हैं, मतलब बिहार की कई सारी चीज़ों पर आजकल पॉडकास्ट हो रहा है। अगर आप मूवीज़ उठा लें तो बिहार की कल्चर को, बिहार की अच्छी चीज़ों को दिखाया जा रहा है ना, सोचने वाली बात। अगर आप भारत में रहे हैं या फिर आप भारत में नहीं भी रहे हैं, मतलब हम तो अमेरिका में भी सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में एक ही चीज़ सुने हैं, लालू प्रसाद यादव। उनके अलावा भैया किसी को नहीं याद किया जाता है बिहार से, मतलब बिहार में बाकी कुछ था ही नहीं, लालू जी ही थे जो आए, राज किए, लूटे पाटे, चाहे अच्छा किए चाहे बुरा किए और चले गए। बट अब मैं देख रही हूँ, मतलब हम देख रहे हैं कि बिहार के ऊपर, बिहार की अच्छी चीज़ों के ऊपर बॉलीवुड में सिनेमा बन रहा है। सिनेमा मतलब मूवीज़, फिल्म, वो भी बनाई जा है और बहुत जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मतलब उसको सेल किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है। एंड आई एम लविंग दैट, डेफिनेटली लविंग दैट, क्योंकि मुझे याद है व्हेन व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, आइदर बॉलीवुड शोज शोड द क्रिमिनल्स मोस्टली एज बिहारीज और यूपी वाला, मतलब जितने बदमाश गुंडे होते थे वो गमछा लपेट के गुंडा ही कर रहे होते थे। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा काया पलट हुआ है और अच्छा चीज़ दिखाया जा रहा है बिहार के बारे में। ढूंढ के कहानियाँ लाई जा रही हैं इन एंड अराउंड में, भी एक बहुत अच्छा तरीका है सेल करने का। छठ पूजा पहले बिहार तक सीमित था, बिहारी लोग बाहर लेके गए, जो बम्बई गए उसको करते थे, अब तो बॉलीवुड बड़े पर्दे पे दिखा रहा है। रिसेंटली मैंने एक रील देखी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मैं, तुलसी जी भी नाक से सिंदूर लगा करके एकदम जल में सूप वगैरह लेकर खड़ी हैं, उनका पूरा परिवार छठ कर रहा है। तो भैया गुजराती लोग को भी छठ की तरफ खींच लिया गया है। एकता कपूर का कमाल है ये, क्योंकि एकता कपूर की ही फिल्म है द वन, और वन का अगला गाना लेकर के आए हैं, इसीलिए इतना माहौल बना रहे थे। तो ये रहा वो अगला गाना।

वाह भैया, तो ये गाना था द वन से सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया। एंड फिल्म ने बहुत कमाल किया बॉक्स ऑफिस पे। 2 दिन में कम से कम 25 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। और हम तो रील में देख रहे हैं कि मतलब हमारे साइड बिहार और यूपी में लोग नाक से सिंदूर लगा लगा के जा रहा है एकदम छठ का गाना के नाम पे। एक तो छठ का गाना ऐसा फेमस हुआ है इस फिल्म से कि सब लोग एकदम दीवाना हो चुका है। तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे गाने लाइन अप करके रखे हैं और अगले गाने की तरफ जाने के पहले आपको बता दें कि आप H1 पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हैं। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प। अटर्नी सीमा मेहता एंड द एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com, दैट्स info@seemamehtalawfirm.com, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता। अगले गाने की तरफ लेके चले आपको, लेकिन गाने के पहले ले जाने के पहले मतलब गाने की तरफ जाने के पहले हम अपने एक कॉलर को बर्थडे की विशेष दे दें। कल था उनका बर्थडे और हम यहाँ नहीं थे तो उनको विश नहीं कर पाए। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अश्विनी जी, एंड अ ब्यूटिफुल ट्रैक जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए आपके बर्थडे पर, ये सुनाते हैं। सो अगला गाना आ रहा है फिल्म, कौन सी फिल्म, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। और आपका बर्थडे था उसके लिए बहुत बहुत बहुत सारा आपको भगवान तरक्की दे, उन्नति दे और लंबी उम्र दे। हमें पार्टी दे दीजिएगा जरूर, फनेशिया के स्टूडियो के सारे आरजेस को आपकी तरफ से। फिलहाल ये गाना आपके लिए।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज थ्री ईटरी?
4: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
5: ड्यूड इट्स पेज थ्री स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट
4: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
6: पेज थ्री ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट
7: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है
8: कितनी लंबी लिस्ट है
7: बस दो पेजेस इंडियन ड्रेसेस मिठाई नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी
8: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो SFL Worldwide है ना इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं पूजा मंदिर हो झूला हो या फर्नीचर सामान छोटा हो या बड़ा ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है
9: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड विजिट SFLWorldwide.com
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
11: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week 8 AM to 8 PM walk in anytime 9191 kaiser way suite 205 frisco
12: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था
13: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
15: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी कॉल तो करो 888-888-9914
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
16: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
17: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
18: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
17: Miss Clicks?
19: 100 लोगों ने click भी किया.
17: Customers कितने आए?
20: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
21: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
22: Don't touch that dial. Keep listening.
23: Wow.
0: 104.9 FM आपकी होस्ट आयुषी फिर से आपका स्वागत कर रही है। छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे गए थे, जल्दी से वापस आ गए हैं और प्यारे और रोमांटिक नंबर्स का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। इस बार कुछ नए वाले रोमांटिक नंबर्स, भाई हम ना मतलब क्या बताएं, 90s के रोमांटिक नंबर्स के दीवाने हैं। बट जब कुछ भी ऐसे प्यारे गाने रिलीज होते हैं नई नई फिल्मों से, तो उसके भी दीवाने हो जाते हैं, लूप पे सुनते रहते हैं उन गानों को। तो जल्दी से लेकर के चलते हैं अगले गाने की तरफ आपको।
1: के मोटर की बाइंडिंग करा के आए, पूरा नहीं है पर हमरे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। फुल इंग्लिश बोल के बताए, आई लव यू।

0: Here was this beautiful track in the voice of Arijit Singh, and now it's time for our Ura Debt Relief segment. I welcome you all, and today we have the pleasure of having Ura Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about Ura Debt Relief Program. Hi, Aman. Thanks for joining us on 104.9 FM Phanesha Radio. Kaise hain aap? How are you doing today?
1: ऑल गुड फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. आज खैर 28 तारीख हो गई है, दो दिन बचे हैं, लेकिन अब अगले दो दिनों में आपको होमवर्क ये दे दें कि अगले महीने जो क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट आएगी, प्लीज उसको भरने से पहले एक बार उरा को कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट को खोल कर देखिए, उस पर क्लियरली मेंशनड है कि अगर आप मिनिमम पेमेंट पे रहते हैं तो 30 से 32 या 35 साल आपको लग जाएंगे उस क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ करने में. ये मेंशन है, मैंने भी कल अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट पे ये देखा, 32 साल. तो अगर आप 30-32 साल क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाए, तो उरा को कॉल कीजिए. क्रेडिट कार्ड कोई भी हो, पर्सनल हो, बिजनेस के हो, स्टोर के हो, इन सारे कार्ड की एक किस्त बन जाएगी और उसमें से आधा कर्जा आपका माफ हो जाएगा और जो बाकी आधा बचेगा उसकी आसान सी पेमेंट बना दी जाएंगी, वो भी इंटरेस्ट फ्री. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपका कोई पर्सनल लोन है जिसकी आप मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं, उतर नहीं रहा है, या गाड़ी है जो रीपोजेस हो चुकी है या टोटल हो गई है लेकिन इंश्योरेंस ने क्लेम दिया है या आधा दिया है, तो जो बाकी गाड़ी का जो लोन बचा है उसको अगर आप माफ करवाना चाहते हैं तो जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, कॉल मी, व्हाट्सएप मी, टेक्स्ट मी, 9167736355. अगेन 9167736355. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org.
0: थैंक यू सो मच अमन.
1: थैंक यू.
0: तो ये थे अमन, उरा डेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव. आप इनसे बात कर सकते हैं 9167763555 पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 1-888-888-9914. आई रिपीट, इट्स 1-888-888-9914. एंड यू कैन ऑल्सो लुक अप ऑन योर ऑन देयर वेबसाइट विच इज www.ora.org. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. ये गाना ना ऑलमोस्ट 5 साल पहले आया था और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने हैं. इसके इस फिल्म के गानों से मुझे इस कदर प्यार हो गया था कि आप विश्वास नहीं करेंगे. उस समय मैं रेडियो पे इसको लूप पे प्ले करती थी जब मैं शो कर रही होती थी. हर दिन ये गाना रिक्वेस्ट किया जाता था या मैं खुद प्ले करती थी और मेरे फ़ोन पे तो ये चल ही रहा होता था, गाड़ी में या फिर किचन में काम करते वक्त, घर में कभी भी रहें ये गाना बज रहा होता था. तो हिज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी शेरशाह.

0: था ना ये बहुत प्यारा सा गाना, और ये गाना मेरे दिल में अभी भी बसा हुआ है। इस फिल्म के सारे गाने बहुत खूबसूरत थे, एंड द पार्ट प्लेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी डिड विन आवर हार्ट्स। सो ये एक असली कहानी है, हम सब जानते हैं शेरशाह के बारे में, अब जान चुके हैं इस फिल्म के ज़रिए, बट मैं ये शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से, बिकॉज़ मैंने ना ये जो किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्ले किया है, जिनका उन विक्रम बत्रा उनके भाई के साथ मैंने भारत में थोड़े टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड काम किया है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ बैंक इन इंडिया, बैक इन इंडिया, तो सेम ऑफिस में थे, उनकी बहुत सारी बातें हमने सुनी है व्हेन ही वाज गिविंग सम सेशन। सो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, सो आई कुड रियली इमेजिन कि उनके भाई विक्रम बत्रा साहब भी वैसे ही बहुत अच्छे इंसान होंगे, और हमने देखा उन्होंने क्या किया है इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए। सो या दिस अ ब्यूटिफुल मूवी एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग विद दिस। हम ढूंढ रहे हैं वैसे गाने जो पिछले कुछ 5 सालों में फिल्में आई हैं उनके, सो उसी में से एक और गाने की तरफ आपको जल्दी से लेकर के चलते हैं। ये रहा वो अगला गाना।
1: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली,
2: जी
1: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूं ना? एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो?
3: एहसास की जो जुबान बन गए।
2: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

खुदा हाफिज का ये गाना ब्यूटीफुल ट्रैक। तो अगले गाने की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी देते हैं आपको, बिकॉज ये भी मेरा फर्ज है। तो PMJ ज्वेल्स इज नाउ इन फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप। एक्सप्लोर ब्यूटीफुल गोल्ड एंड डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी ओकेजन। विजिट PMJ ज्वेल्स ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को, ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको, एक और बहुत ही प्यारा सा गाना लेकर के आ रहे हैं इस फिल्म की तरफ से, फिल्म की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से इस फिल्म का, जो कि कबीर सिंह, गाना 7 साल पुराना है, लेकिन आज भी कबीर सिंह के गानों के सब दीवाने हैं।

शाहिद कपूर एंड कियारा आडवाणी का ये गाना कबीर सिंह, ऑल द रोमांटिक नंबर्स फ्रॉम दिस मूवी ऑल्सो टच्ड एवरीबडीज हार्ट। तो चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। और जब हम रोमांटिक नंबर्स की बात करें, स्पेशली इन 4-5 सालों में, तो पिछले साल जो ये फिल्म आई है इसने सबको दीवाना करके छोड़ दिया था, इसके गानों ने स्पेशली। एंड मेरे पास ना जितनी दिन भर में कॉल आती है ड्यूरिंग माई शो, उसमें से ये गाना हर बार रिक्वेस्ट किया जाता है। सो टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा नंबर है ये, इसकी तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं। ये है फिल्म सैयारा से अहान एंड अनीत पड्डा की फिल्म, और बहुत ही प्यारा गाना फिल्म सैयारा से।

अब बारी है हमारे गिव अवे की. तो यू हैज योर चांस टू विन $10 ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. सो टेकिंग यू टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट सॉन्ग. बस आपको करना कुछ नहीं है, इस मूवी का नाम बताना है. बहुत ही प्यारा रोमांटिक नंबर है. कॉल करिए और नाम बताइए इस फिल्म का. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर.

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस फिल्म का गाना था ये। ढेरों कॉल आए मुझे, पर मुझे तो बस विनर एक ही चूज करना था, इसलिए पहले कॉलर हमारे थे निखिल। निखिल रंगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निखिल। ओके, सो निखिल, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। आई लेट यू नो दैट यू कैन एंजॉय दिस स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली, लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन। विजिट चंडीगढ़bites.com फॉर डिटेल्स। फॉर ऑल लिसनर्स प्लीज मेक फॉर ऑल लिसनर्स हु जस्ट कॉल्ड मी, उनको जो नहीं जीत पाए गिव अवे, उनके लिए है ये कि भाई कॉल करते रहिए, हर सेगमेंट में एक ना एक गिव अवे देते ही हैं हम, और आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन यस गिव अवे ज़रूर देंगे हम आपको। तो रॉकी और रानी का ये प्यारा सा गाना हम आपके लिए लेकर के आए थे। ऐसे ही बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गानों का सिलसिला चल रहा है फिलहाल, हम उन मूवीज़ को देख रहे हैं, मतलब उनके गाने सुन रहे हैं जो कि पिछले 5 सालों में आए थे, और उनके प्यारे रोमांटिक नंबर्स ने हमारे दिल पे कर लिया है कब्जा। वक्त हो रहा है जाने का, अभी समय है 10 मिनट और हूँ आपके साथ, सुनाऊंगी आपको अच्छे प्यारे गाने, और अगर आपको मेरा शो पसंद आ रहा है तो प्लीज सुनते रहिए हर मंडे से फ्राइडे तक 12:30 से 2:30 बजे तक। आपकी होस्ट आयुषी यहाँ रहेगी, और आप हमारा फनीशा का इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करिए, अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलेंगे आपको वहाँ से। सो यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो अस देयर, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, यू कैन लिसन टू अस ऑन आवर वेबसाइट, एंड फनीशा चारों तरफ है आपके, बस नजर घुमाइए और वहां पाइएगा हमें। चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चल रहे हैं, फिल्म एनिमल से है ये, और हाँ अगर आप अपनी बिहारी मॉम को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम में वहां भी जाके फॉलो कर लीजिए यार, थोड़ा देखने मिलेगा आपको, मेरी बकबक वहां भी सुन सकते हैं आप। फिलहाल एनिमल का ये गाना आप लोगों के लिए, रणबीर कपूर एंड तृप्ति दमरी इन दिस सॉन्ग फ्रॉम एनिमल।

So that was a beautiful track from the movie Animal. और आज कुछ romantic numbers recent जो पिछले 5 साल में आए हैं वो play किए मैंने आपके लिए. उम्मीद करती हूँ आपको मेरा show, मेरी बातें पसंद आई होंगी. तो प्लीज़ सुनते रहिए फनीशिया. आप रोज़ मुझे 12:30 से 2:30 बजे तक सुन सकते हैं हफ्ते के 5 दिन. आपकी होस्ट आयुषी उर्फ बिहारी मॉम. और यस, मॉम होना थोड़ा सा स्पेशल ऐसे ताकत देता है, एनर्जी देता है, बिकॉज यू नो दैट्स द पॉइंट इन योर लाइफ वेयर यू बिकम मच स्ट्रॉन्गर. यू स्टार्ट लर्निंग टू से नो, टू डू राइट थिंग्स, टू नॉट टेक बकवास इन योर लाइफ एंड जस्ट डू वॉट एवर यू विश टू. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, वो भी आपकी तरह पीपल प्लीजर हो जाएंगे. तो बिल्कुल माँ बनने के बाद एक जो अलग किसी शरीर में जोश आता है ना, वो है एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं हम मेंटली फिजिकली चाहे कुछ भी हो. सो ऐसे ही बनी हूँ मैं बिहारी मॉम, दैट्स व्हाई माय हैंडल सेज दैट. एनीवेज आज के लिए विदा लेती हूँ. इसके बाद सुनहरी किरण आपको आफ्टरनून ड्राइव टाइम पे लेकर के जाएंगी. एंड टू ऑल द मॉम्स एंड ऑल द People out there are listening to me, giving me so much love. Thank you so much. Your love brings us here every day to do something different, something better every time. अगर कुछ भूल चुक हो जाए तो माफ करिए, बट सुनते रहिए फनीशिया 104.9 FM. छोड़े जा रही हूँ शाहरुख के इस गाने के साथ. बहुत ही प्यारा गाना है शाहरुख और तापसी की फिल्म से, जिसका नाम है डंकी.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता है?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
5: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है। हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
8: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
5: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
8: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
7: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire, Frisco, your divine destination for festive fashion. What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
9: Every home has a story. Let's create yours together.
10: Wait a minute. Who are you?
7: Did someone say $100 credit for pizza? If you have an Amex Platinum card, you may be eligible for a $100 credit at Fun Pizza Kitchen. Treat yourself to cheesy favorites, special flavors, and mouth-watering toppings that'll have you coming back for another slice. Just visit the Fun Pizza Kitchen Frisco location before September 30th. For eligibility and details, call the Frisco location or simply walk in. Fun Pizza Kitchen. Bring your appetite. We'll bring the flavor.
11: एक और लड्डू ले लो।
12: थोड़ी और बिरयानी।
11: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
13: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care.
14: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
15: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Thank you Ayushi for as always a beautiful, beautiful show. और जी, Fun Asia रखता है आपको entertained as well as informed 24/7, 365 days a year. हमारा है यही मोटो और आप भी हमारे साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू. आज है मंडे और आप जानते हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आपको मिलता है हर रोज एक नया फ्लेवर. मंडे इसका फ्लेवर इज कंप्लीटली यू, यानी कि पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. फिल्मी फरमाइश सुन रहे हैं आप, 972-235-5555 नंबर है. कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई याद, कोई मोमेंट, एनीथिंग, दिस इज योर टाइम. ढाई बजे से पाँच बजे तक, इनफैक्ट साढ़े चार तक, क्योंकि साढ़े चार से पाँच तक हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेस. सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर, आई एम ऑल Yes, this is 104.9 FM. Thank you so much for connecting. A very good afternoon.

आपकी पसंद चल रही है आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, और डेडिकेशंस ले रही हूँ, आपकी फरमाइश ले रही हूँ, कोई गाना आप सुनना चाहते हैं 90s से ऑनवर्ड्स होना चाहिए जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है, एंड इट हैज टू बी अ हिंदी और अ बॉलीवुड सॉन्ग, दैट इज जस्ट वन और टू थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. अच्छा जी, अब जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दैट इज अ डेडिकेशन, एंड दैट डेडिकेशन इज गोइंग फ्रॉम पूर्वा टू हर हस्बैंड राजीव. राजीव, आपका बर्थडे है आज, कॉन्ग्रेचुलेशन, अ वेरी हैप्पी बर्थडे to you, wish you all the best, and Purva is sending out this song to you. You are traveling, as we found out, so happy travels and enjoy your birthday. This is going out from your lovely wife to you.

जी हाँ, डेडिकेशंस फरमाइशों का और आपकी पसंद के गानों का सिलसिला जारी है राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और कुछ फाइनेंसिस की बात हो जाएगी, लेड बाय सीपीए सुधीर पाई. माय टाइम इक्विटी इज द प्लेस जो आपको ऑफर करती है पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग. कोई भी आपका रिक्वायरमेंट है, नीड है, आप माय टाइम इक्विटी को कॉन्टैक्ट कीजिए. लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, he is definitely going to help you and create the best strategies for you. That number is 469-702-1272 या फिर आप कर सकते हैं उनकी वेबसाइट विजिट, which is mytimeequity.com. और ये जो अगला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ये है जी दिव्या की रिक्वेस्ट पे. दिव्या ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की और मैंने उनसे पूछा कि आप ये गाना क्यों सुनना चाह रही हैं, तो बड़ा मतलब सही जवाब था कि जैसे ही आपने बोला फरमाइश आपकी लूंगी तो यही गाना मेरे जहन में आया. कई बार हमारे जहनों में कुछ ऐसे गाने आते हैं सबकॉन्शियस से निकल के जो हमें याद भी नहीं होता और एकदम से उसके लिरिक्स हमारी होठों पे आ जाते हैं, और यही है फिल्मी फरमाइश का खासा. दिव्या, इट्स फॉर यू.

और अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी कार या किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व्ड हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. और हम सभी जानते हैं जी कि पेपर वर्क होता है, लीगैलिटीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक अटर्नी चाहिए जो कि आपके साथ या आपके लिए ये सारे काम करे एंड मेक थिंग्स ईजी फॉर यू. और वो अटर्नी है अटर्नी उमर ख्वाजा. अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम ना सिर्फ आपका केस फाइल करेगी, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ भी पे नहीं करना जब तक कि आप अपने केस को जीत नहीं जाते. तो इस मुश्किल वक्त में ये राहत की खबर मैं आपको दे रही हूँ. अपने जो है अटर्नी उमर ख्वाजा से कॉन्टैक्ट कीजिए, गेट अ फ्री कंसल्टेशन, टॉक टू देम एंड सी वेयर यू स्टैंड एंड हाउ दे कैन हेल्प यू. 4693005046 उनका नंबर, 4693005046. या फिर आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट विच इज attorneyomar.com. एंड दिस नेक्स्ट नंबर इज रिक्वेस्टेड बाय साद. साद, दिस इज फॉर यू.

0: एंड विद दैट वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक. लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, इफ यू आर लुकिंग फॉर स्मार्ट फाइनेंसेस, ट्रस्टेड गाइडेंस, वन प्लेस टू हैंडल इट ऑल, देन एजी फिनटैक्स इज दैट प्लेस. दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर टैक्स प्रिपरेशन, अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस ओनर, एजी फिनटैक्स कैन हेल्प यू. एंड चाहे ये टैक्स सीजन हो या फिर यू नीड हेल्प मैनेजिंग योर बिजनेस फाइनेंसेज, एजी फिनटैक्स आपको फास्टेस्ट रिलीफ और opinions or advice provide karta hai. Give them a call, 469-942-9888. Once again, that number is 469-942-9888. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, agfintax.com. Visit them today. I'll see you after a break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
5: We need to talk.
8: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
8: Oh no.
5: It's the distance.
8: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
9: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में, अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एंड

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. फिल्मी फरमाइश चल रही है आपकी पसंद आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे. मनपसंद आरजे के साथ मैं खुद ही बन जाती हूँ आपकी मनपसंद. चित्रा जी ये आपकी फरमाइश पे गाना प्ले कर रहे थे. हिंदी और बॉलीवुड इज व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू रिक्वेस्ट, ताकि जो है हम इसको एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू Fun Asia Radio कैन एंजॉय इट जस्ट एज मच एज यू आर रिक्वेस्टिंग इट. अच्छा जी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए फरमाइशों का सिलसिला जारी है. आप फरमाइश कर सकते हैं, अपनी पसंद का गाना बता सकते हैं. थोड़ा सा इस फरमाइश को कर देते हैं स्पेसिफिक, और वो किस चीज से स्पेसिफिक, ये गाना आपको क्यों याद आया, ये है जी आज इस वक्त का स्पेसिफिक. सबसे पहले एक गिव अवे लाई हूं इसके साथ रिलेटेड. डक टाइम की तरफ से ये गिव अवे है आपके लिए. 50% ऑफ हासिल कर सकते हैं आप ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम. तो सबसे पहले तो मैं आपको डक टाइम के बारे में बताऊं कि डक टाइम जो है अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे हैव अमेजिंग रिव्यूज, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन द कम्युनिटी. यू वांट एनी डक क्लीनिंग सर्विस, कॉन्टैक्ट डक टाइम. जीतू पटेल जी ऑफ डक टाइम इज हु कैन हेल्प यू. Give him a call, book your schedule, ask your questions, whatever it is. 972-877-2500 उनका नंबर है. Once again, the number is 972-877-2500. जीतू पटेल ऑफ डक्ट टाइम. और डक्ट क्यों सफाई करानी है आपको, ये तो मतलब आपको पता ही है. डक्ट के अंदर कितनी सारी डस्ट होती है, हमें वो डस्ट रिमूव करनी होती है. क्लॉग्ड वेंट्स क्लियर हो जाते हैं, एयर फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो फायर हैजर्ड होता है बहुत सारी इस डक्ट की अननेसेसरी फिलिंग का, वो रिड्यूस हो जाता है. सो कॉल डक्ट टाइम. और अब मुझे बताइए कोई गाना ऐसा जो आपके जहन में आ रहा हो. आपकी फरमाइश चल रही है जी, तो कोई अपनी पसंद का गाना बताइए, लेकिन मुझे साथ ये बताइए कि उस गाने के साथ आपकी कोई मेमोरी जुड़ी है, कोई याद जुड़ी है, कोई शख्स की याद जुड़ी है, क्यों याद आ रहा है आपको ये गाना, कोई भी एसोसिएशन विद दैट सॉन्ग. आई वुड लव टू शेयर नो योर स्टोरी एंड यू माइट जस्ट बी अ विनर फॉर दिस 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: Tanisha Radio, you are live on air. What is your name?
1: Hi, my name is Arun Kumar.
0: जी अरुण, बताइए कौन सा गाना और क्या याद जुड़ी है आपकी?
1: अच्छा, मुझे वो गाना सुनना है, मूवी गुरु का, तेरे बिना बेसवादी ये रतियां।
0: बिल्कुल सही। कि क्यों सुनना चाहते हैं, क्या याद जुड़ी है?
1: मेरी वाइफ गई हुई है ट्रैवल पे।
0: Well, that's a good reason to listen to this song. ठीक है जी, आपकी request अभी थोड़ी देर में play करते हैं. Thank you so much. Arun, सुनते रहिए. If you're the winner, I will ask you to give me a call back. Just give me 5 minutes and stay tuned, okay?
1: Thank you.
0: You're welcome.

लेके आई थी आपके लिए डक टाइम की तरफ से ये 50% ऑफ ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. और आपसे बस पूछा था कोई गाना जो आप फरमाइश कर रही हैं वो क्यों जहन में आ रहा है, क्या याद, क्या मेमोरी जुड़ी है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स अरुण, अमीना जी, सईदा जी. और अब हमारा कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है जी, गाना खत्म हो गया है. और हमारी जो आज की लकी विनर है, आपका विन ही डिसाइड करता है, आपका लक डिसाइड करता है आपका विन, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं वो सीक्वेंस में एक मैथ के फॉर्मूले में डाल के एक नंबर निकलता है और वही नंबर विनर होता है. तो हमारी आज की लकी विनर हैं अमीना सरफानी. अमीना कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने डक टाइम का ये 50% डिस्काउंट ऑन ड्रायर वेंट क्लीनिंग. वी हैव योर डिटेल्स, समबडी विल गेट इन टच विद यू. अपने फोन या अपनी ईमेल को, अपने नंबर या अपनी ईमेल को जरा आप देखते रहिएगा. अच्छा जी, बहुत मजे मजे की आप लोगों ने हमें गाने बताए, क्या याद आ रहा है, क्यों याद आ रहा है, जैसे कि तेरे बिना बेस्वादी अखियां, या फिर खाई के पान बनारस वाला सईदा जी ने बताया और अमीना जी ने बताया अखियों के झरोकों से. अब मैं अखियों के झरोकों से आपके लिए जरूर प्ले करती हूं, लेकिन कोशिश हमारी होती है 90s से आगे का गाना प्ले करने की, सो आई विल स्टिक टू दैट. और प्ले करते हैं दिस वन जो कि अरुण जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था. अरुण, दिस इज गोइंग आउट टू यू.

गुरु फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना मणि रत्नम का। ये सुपर हिट ड्रामा था और आपको इस गाने का एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जी ये जो गाना फिल्म हुआ था, दिस वॉज फिल्म्ड लॉन्ग आफ्टर द प्रिंसिपल फोटोग्राफी रैप ऑफ गुरु। तो अभिषेक जो हैं वो ऑलरेडी अपनी मूवी झूम बराबर झूम के लिए काम शुरू कर दिया था उन्होंने और उनके बाल बड़े हो गए थे, जबकि गुरु फिल्म में आपको याद होगा उनके बाल छोटे थे। तो जो जब ये गाना पिक्चराइज होने लगा तो फिर उस वक्त जो क्रू होता था वो उनके बालों को पिनअप करता था ताकि उनकी वो जो छोटी लुक है गुरु फिल्म की उसके साथ उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। तो ये एक छोटा सा किस्सा आपके लिए इस गाने का गुरु फिल्म से। ये भी दैट वॉज प्लेइंग फॉर अरुण। और अब एक बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट, एक्चुअली सईदा जी ने हमें ये गाना बताया था। सईदा जी, पुराना गाना ग्रेट गैम्बलर का तो सॉरी डॉन फिल्म का तो मैं नहीं प्ले करूंगी, लेकिन नई वाली डॉन जो शाहरुख खान पे पिक्चराइज थी उससे लिया गया ये गाना। दिस इज खाई के पान बनारस वाला।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में।

0: छोरा छोरा गंगा किनारे वाला, हो छोरा गंगा किनारे वाला।
1: जी हाँ जी, डॉन मूवी, अब दो दो डॉन मूवीज हैं, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल डॉन मूवी का किस्सा सुनाती हूँ। अमिताभ बच्चन साहब ने इस गाने खाई के पान बनारस वाला, जो कि 1978 में आई थी, इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए उन्होंने 30 से 40 पान खाए थे ताकि उनकी लुक बन सके, वो जो नेचुरल लिप कलर आना होता है और वो जो पान का एक लहजा होता है, जो लोग पान खाते हैं, वो जो जिस तरीके से बोल रहे होते हैं, वो सारा कुछ लाने के लिए इतना पान खाया कि चूने से उनकी जबान कट गई, उनके माउथ में कट्स पड़ गए, एंड इट गॉट सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू से द डायलॉग्स, बट देन दैट वॉज अमिताभ बच्चन द परफेक्शनिस्ट। ये किस्सा आपके लिए।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
6: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
7: Ja pehle us aadmi ka sign lekar aao jisne mere haath pe ye likh diya tha.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
9: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
12: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
13: डील कहाँ?
12: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
13: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
14: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
15: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में
16: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
18: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. सीक्रेट सुपरस्टार से लिया गया था ये सुपर डुपर हिट गाना एंड एब्सोल्युटली लव इट. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि अगर आपका स्केड्यूल बिजी है और आपको टाइम नहीं मिल रहा अपनी हेल्थ का चेकअप कराने का, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को देखने का, तो फिर कोई मसला नहीं. योर हेल्थ केयर कैन फिट into this, यानी के Passion Health Primary Care. At Passion Health Primary Care, Dr. Cheryl Shamathil, Board Certified Family Medicine Physician, अब available हैं आपके लिए Saturday को from 9 a.m. till 1 p.m., making it easier for you to care for yourself and care for your needs without missing work. रूटीन चेकअप्स हो या फिर प्रिवेंटिव केयर हो, वेट लॉस मैनेजमेंट हो या फिर कोई और आपका पर्सनल मसला हो, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर फॉर यू. और आपके स्केड्यूल के मुताबिक आपके लिए सारी स्केड्यूलिंग करता है, यानी कि सैटरडेज को 9 AM से 1 PM तक अवेलेबल हैं एट द इरविंग लोकेशन फॉर यू. दैट लोकेशन इज 230 ओकोनर रिज बुलेवार्ड स्वीट 110 75038 इज द सिप कोड. आज ही कॉल कीजिए टू बुक your appointment or any other questions that you have. That number is 214-666-6259. Once again, the number is 214-666-6259. This is Passion Health Primary Care, quality care that works with your schedule.

ऑलराइट, और इसी के साथ आया है आपके लिए एक गिव अवे ब्रॉट टू यू बाय बरिस्ता हाउस. बहुत पॉपुलर बरिस्ता हाउस जो कि डेंटन में लोकेटेड था, अब फ्रिस्को में आपके लिए खुल चुका है. ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. आइए और ट्राई कीजिए उनकी ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानीज, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर्स और साथ ही साथ डिजर्ट्स, यानी के जो उनका स्वीट सेक्शन है वो तो है अमेजिंग. और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको बरिस्ता हाउस पे. और अब लेके आई हूँ आपके लिए $20 का गिफ्ट कूपन ऑन योर डाइन इन बिल. तो आप आइए बरिस्ता हाउस, डाइन इन कीजिए और अगर आप विनर होंगे तो $20 ऑफ मिलेंगे आपको बरिस्ता हाउस पे, लोकेटेड इन फ्रिस्को. अच्छा, गिव अवे का सवाल बड़ा सिंपल है जी. बरिस्ता हाउस जाने के लिए आपको उसका एड्रेस डालना होगा. कहाँ खुला है फ्रिस्को में ये आप मुझे बताएंगे. 972-235-5555 कॉल कीजिए और मुझे बताइए बरिस्ता हाउस फ्रिस्को में किस लोकेशन पे खुला है, यानी कि स्ट्रीट एड्रेस बताइए और जीत लीजिए ये $20 गिफ्ट कूपन फॉर डाइन इन ओनली. वंस अगेन द नंबर टू द स्टूडियो इज 972-235-5555.

बरिस्ता हाउस की तरफ से आया था आपके लिए गिव अवे $20 ऑफ योर डाइन इन बिल. और आपको क्या करना था, मुझे उनकी फ्रिस्को लोकेशन का एड्रेस बताना था. तो जी थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स. और हमारी जो आज के लकी विनर हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपका नंबर मैं एक मैथ के फॉर्मूले में डालती हूँ जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं, योर लक डिसाइड्स योर विन. और आज की हमारी लकी विनर है शैली पटेल. शैली कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 7 days to go to the restaurant and avail your $20 off your dine-in bill. एक बार आपको करेक्ट आंसर बताते चलें जी, ताकि आप सब जरूर जाइए, उन्हें विजिट कीजिए और यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली लव देयर फूड. दैट एड्रेस इज 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सस. वंस अगेन, 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सस इज वेयर यू नीड टू गो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का, एज ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी फोन कॉल्स बहुत मैटर करती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.

0: actually craving.
1: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, Hub 121 McKinney.
2: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
6: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में सुन रहे हैं आप पसंद आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. ये अनदर 20 मिनट्स आई विल बी टेकिंग योर रिक्वेस्ट. 4:30 PM ऑनवर्ड्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे अटर्नी संजय माथुर फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेज हु विल बी विद अस फ्रॉम 4:30 till 5 PM टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव. तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी यू हैव अ स्पेशल डे कमिंग देन ऑफ कोर्स You deserve to make it unforgettable. Planning a wedding, graduation, housewarming ho, koi bhi aur special celebration ho. Let Vanessa Events bring it all together. From the perfect venue and stunning decor by signature events to photography, hospitality, aur saath hi saath exclusively catering by Basera Grand. To aap celebrate kijiye apne event ko, enjoy kijiye bagair stress ke, stress free, and let Vanessa Events handle the details. For your next big occasion, call Hari Basera Sahab at this number 469-442-8770. Once again, Hari Basera is the contact person that you will call at 469-442-8770. This is Vanessa Events, your celebration partner from the first detail to the final memory. Enjoy.

वैसे कुछ लोग वाकई एकदम से फील होता है कि जरूरी हो गए हैं और पता नहीं चलता कि कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ. लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. इफ यू हैव समवन हु इज सो मच इंपॉर्टेंट टू यू, यू आर एब्सोल्युटली लकी टू हैव समवन लाइक दैट इन योर लाइफ. और अब जी वक्त आ चला है आपको वेदर अपडेट देने का. यूजली हम 4:30 के बाद लेके आते हैं वेदर और करेंसी अपडेट, लेकिन सिंस टुडे 4:30 टिल 5 संजय माथुर जी विल बी विद अस, सो इट इज टाइम नाउ टू गिव यू वेदर अपडेट मंडे September the 28th, 4:15 PM in the studio. Aur city of Makini mein is waqt hai 88 degrees. However, it feels like 94 right now. Partly sunny, partly cloudy sa din raha. 20% chance of showers and thunderstorms bhi rahe. Highs around 90s, jabki sham rahegi partly cloudy. Lows in the lower 70s. Pollen count aaj ka extremely high, which is 11.2. Please take your remedies, whatever you need to do. Ragweed, grass and elm is what is bothering where pollen is concerned. UV index is 8, which is a medium high to high. So keep your sunscreens handy and keep yourselves hydrated. Sunrise aaj ka hua 7:18 subah, 7:18 AM. Jabki aaj ka sunset hoga 7:15 sham, yani ke 7:15 PM. That was your weather forecast. Achha ji, aaj is September 28th, yani ke September ka mahina bhi ho chuka, bas almost khatm. October, November, December, saal shuru hota hai aur phir ekdam se ho jata hai. All right, this one is अपने साल के जो जो आपके रेजोल्यूशन थे, आई होप कि आपने मीट कर लिए हो, वरना अभी 3 महीने और हैं. जस्ट वर्क टूवर्ड्स इट. दिस वन इज गोइंग आउट टू निधि. निधि, हियर इट इज.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. वैसे गाना था ये हमें ना भुलाना. और गोल्ड प्राइस मैं हमेशा कहती हूँ कि गोल्ड प्राइस या सोना ऐसी चीज़ है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता. उसी की कीमत के अंदाजे से डिफरेंट चीज़ों की कीमतें लगाई जाती हैं जी. तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,115.14 जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $132.03. कल की नस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $5.23 की कमी हुई जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $162.64 की कमी हुई. That's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. After the song, we are going to talk about the traffic update. We're going to head on to a break and then Mr. Sanjay Mathur will be with us live to take your questions.

विद दैट ट्रैफिक अपडेट के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. लकीली कुछ खास नजर नहीं आ रहा मुझे ट्रैफिक में. देयर इज अ डिसेबल्ड व्हीकल दैट आई कैन सी एट 35 ईस्ट टुवर्ड्स वेलवुड पार्कवे साउथ बाउंड, जिसकी वजह से अ सेंट्रल लेन इज ब्लॉक्ड, लाइक वन लेन इज ब्लॉक्ड आउट ऑफ 9 या 8. सो दैट इज प्रीटी मच ऑल. द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज ऑल्सो नॉट हाई, बल्कि माइनर सा इंसिडेंट है ये. लेकिन फिर भी जब ट्रैफिक का आवर या रश आवर शुरू होता है तो एक लेन का ब्लॉकेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. So please be careful when you are heading there. Other than that, there is a collision that has been reported at IH30 towards Irby Campbell Boulevard westbound. But this was reported about 2 to 3 hours ago. So mujhe yakin hai ki yahan pe ab clearing up almost shuru ho gayi hogi. The severity of that incident was reported extremely high. There were 2 lanes blocked out of 5. Ye tha aapka traffic update. Jahan bhi aap ja rahe hain, dhyan se jaiye. Ek baar phir aapko update deti chalun. From 4:30 onwards, hamare saath connected honge attorney Sanjay Mathur from the Mathur Law Offices, and आपकी questions लेंगे live till 5 PM on the airwaves of Fun Asia Radio. अगर आपको मैं आप call करते हैं, मैं आपको hold पे डालती हूँ. If you can hear him answering a previous question, please hold your spot in the line, because इसका मतलब अगर आप उनको सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि you are next in line to ask your question. Please be patient, hold your spot, and I will connect you with him as soon as he is done answering. Thank you so much. Stay connected. I will see you right after the break with the attorney Sanjay Mathur's segment.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
5: कितनी लंबी लिस्ट है?
4: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
5: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्डवाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
6: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
7: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
8: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे। What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
10: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
11: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
9: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
11: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
8: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
12: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
13: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
12: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
13: वो पता नहीं।
8: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स है। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाय रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
12: Ab hui na smart marketing.
8: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
14: Smart Reach AI, a Panacea Network product.
15: The Dill of Dallas. Heart to heart.

0: रेसिपी।
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
2: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

Lovely track, The Magic of A.R. Rahman with the track Aapki Nazaron Ne Samjha. Kuhu Kuhu is the singer and A.R. Rahman sahab ne isko produce kiya ji. 15 hours ago this track came out, crossing about 24,000 views. If you loved it, just like me, go check it out. Aapki Nazaron Ne Samjha, which is the A.R. Rahman version. That came out just recently. It's 5:15 in the studio clock, 5:15. Monday aa gaya hai yaar, ye weekend bhi na China mein banaya inhone. फटाफट से मंडे आ जाता है, चलता ही नहीं है वीकेंड लंबा, क्यों इसको कोई प्रॉब्लम है? चलो, इसकी उम्र बढ़ाने का तरीका हम ढूंढेंगे कहीं ना कहीं और आपके साथ शेयर करेंगे जब हमें पता लग गया कि कैसे इसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है. मैं काफ़ी जोक्स करता हूँ. परसों बीवी ने मेरे साथ किया ब्रो, बोली आज खाने में घर आओ तो पनीर की सब्जी बनाई है. मैंने कहा कौन सी? कहते जी खोया पनीर बनाया. मैं बाय गॉड सब्जी पूरी खा ली, ढूंढता रहा पनीर नहीं मिला. मैंने कहा इसमें पनीर तो है नहीं. कहती हाँ, तभी तो नाम खोया पनीर है.

0: रे बावरी टेकन फ्रॉम द मूवी डोंट बी शाय. दिस इज आलिया भट्ट एंड राम संपत के साथ इस फिल्म आने वाली है. इट्स समथिंग दैट इज कमिंग अप वेरी सून, नॉट येट दो. यस्टरडे वी सॉ अ गेम बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंडिया, द फर्स्ट ओडीआई आउट ऑफ द थ्री दैट दे आर सपोज टू प्ले. वेस्ट इंडीज डिड वेल मैन, मुझे नहीं लगा था कि इतना स्कोर बनाएंगे, बट 295 फॉर 7 इन देयर फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग. द टॉप स्कोर देयर वॉज जस्टिन ग्रीव्स 101 ऑफ 108, जॉन कैम्बल 62 ऑफ 60 एंड अमीर जांगू 58 ऑफ 43. फिर आई जी इंडिया बल्लेबाजी करने, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस इंडिया गेव. 41 ओवर्स में गेम खत्म, 300 for 2, इंडिया वन दैट गेम. विराट कोहली 139 फ्रॉम जस्ट 88 डिलीवरीज, व्हाट अ प्लेयर ही इज एंड व्हाट अ गेम ही प्लेड यस्टरडे. एंड देन कम्स मिस्टर शुभमन गिल 110 ऑफ 108 एंड रोहित शर्मा 32, टेकिंग द टोटल टू 300 इन जस्ट 41.4 overs. What a wonderful win that was. Tomorrow we have another game. I believe that is tomorrow. Let me double check for you. Jo kal, I think India West Indies has one more game, and I'm sure that is going to be on Wednesday actually. Parso hai. That is going to be September 30th. Subah subah 3:30 baje shuru hoga. Matlab main to last ka kuch part dekh paunga. एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जनाब. नजरों में नशा, बोली में मिठास है, अंदाज में मेरे अलग ही बात है. इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं जनाब, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं जनाब, बस आप लोगों की पसंद थोड़ी खास है. अभी आया वापस.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
4: Every home has a story. Let's create yours together.
5: We need to talk.
6: अब क्या हुआ?
5: Nothing. It's not you.
6: Oh no.
5: It's the distance.
6: Distance? We live 10 minutes apart.
5: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
7: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jagu Times available hai ek click par, thejagutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jagu Times Commission, Jagu bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
11: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: हाय डैलस, दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

द की टू चाबी ऑफ सक्सेसफुल रिश्ता हस्बैंड वाइफ का मेरे को समझ आ गया और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज के। देखो मर्दों, पता क्या राज होता है, जब आपको बीवी कोई हरकत अच्छी लगती है ना, कोई बात अच्छी लगती है, तो उसको बताना जरूरी होता है, ठीक है। अब अगर भाभी की आपको कोई बात अच्छी लगती है, बताओगे नहीं तो उसको लगेगा ना कि आपको अप्रिसिएशन नहीं है। इसलिए अगली बारी भाभी आपसे कभी पूछे कि आपको मुझे कौन सी, मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है, तो बता देना। जब तुम गुस्सा करके बात नहीं करती हो या जब बहुत ज्यादा गुस्सा करके मायके चले जाती हो, बता देना। देखो बातें अच्छी लगती हैं तो बतानी चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। भाभी आपको भी अगर कोई बात इनकी अच्छी लगती है तो बतानी चाहिए आपको भी, जैसे कि शट अप और ये बिल्कुल चुप हो जाए, कमाल है। ये बिंदास है। अच्छा, हमारे को ना ये समझ नहीं आती कि आपने जो बात करी वो हमारे उसी टाइम के लिए थी, बाद के लिए थी, पहले के लिए थी। हम कुछ पूछना शुरू करते हैं पर जेंटलमैन यू व्हेन शी सेज मत बात करो तो कुछ ना करो, बोलना दो उसको बस।

बट लेट्स फेस इट मैन, हर आदमी की ना जिंदगी बिल्कुल आम जैसी होती है. आम मतलब मैंगो, क्योंकि सारी उम्र हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष कर करके पकते हैं और पकने के बाद टपक जाते हैं ब्रो.

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ले लेंगे फ्री में, जो भी आप दोगे हम ले लेंगे, पावे तम्मा शम्मा ही हो। वैसे तो हमें चाय पकौड़े समोसे मिलने चाहिए, वो तो हम कहीं भी खाने चले जाते हैं। मैं तो पैदल चला जाता हूँ लाहौर तक शादी अटेंड करने, अगर कोई शादी में बुलाए सही। यू लिसनिंग टू इवनिंग ड्राइव टाइम शो 5:46 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:46। कौन है हमारे साथ, कर लेते हैं इनसे वार्तालाप। गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
1: हेलो, आई वंडर इफ यू कैन प्ले द सॉन्ग अरेबियन नाइट 234।
0: ये है अरेबियन नाइट, अरेबियन नाइट 234, ये किसका गाना है ब्रो?
1: यस, दैट वन राइट देयर,
0: अरेबियन नाइट राइट देयर, नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड, इट्स ओके राइट देयर फॉर यू कमिंग अप अरेबियन नाइट। पर डिकरा कुछ डिकरा लोग भी कॉल करता है मियां, मुझे अच्छा लगता है मैन। अच्छा चलो खैर, बन मस्का कौन खिला रहा है, मैं तो आपको सुना रहा हूँ जी गाने, एंड यही मेरा काम है आज की शाम, आपको कुछ कुछ और खास बताना है। ऑफकोर्स एक गिव अवे का मैंने बताया था जी आपको, वो भी आ रहा है, पहले ये बता दूँ। दिस पार्ट ऑफ शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास प्राइमरी केयर, दे आर ऑफकोर्स PCP डॉक्टर का ऑफिस है जी, एंड दे आर समबडी आई यूज एज माई प्राइमरी केयर डॉक्टर, हिज नेम इज डॉक्टर मंजीव आचार्य। 13 ईयर्स से आपके लिए लेके आए हैं टेक्सास प्राइमरी केयर, विच इज प्राउडली केयर फॉर आवर कम्युनिटी, एंड एक और ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं विच इज देयर सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन। पहला लोकेशन है टेक्सास प्राइमरी केयर, दैट इज ऑन मेन स्ट्रीट एंड 423. The second location is on Kaiser Way, and this is Lunoxy Medical, founded by the Dr. Mandeep Acharya. Lunoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-rays and CT scans and cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services all under one roof. ये आपको दोनों locations पे services मिलेंगी, चाहे आप Texas Primary Care Clinic पे जाएं on Main Street or go to Lunoxy Medical. They have all of these services in-house and that is a great, great help. I personally love their facility. I think the staff is excellent and these people are also open 7 days a week. Walk-in कर सकते हैं आप anytime, you don't need an appointment. And they are open 8 a.m. to 8 p.m. 7 days a week. Like I said, you're going to be with me till 7 o'clock. एक बात है ना, वैसे हम लोग सारे ये सोचते थे कि बचपन में पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, बचपन में सुकून तो बहुत था ना। खैर पैसे तो अभी भी नहीं है, सुकून पता नहीं किधर चला गया। Right after this track, ready for Mirage Lounge, $20 off your $50 bill. How to win that? बताता हूँ।

0: Wishing Ranbir Dikra a very happy birthday. No, Ranbir Raj Kapoor celebrating his birthday today, 28th of September 1982. Aaj chota bhai 44 years ka ho chuka hai. Matlab mere se bade hain yaar वैसे 2 साल. Happy birthday Ranbir from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas Marvindas. A very happy birthday to Mr. Ranbir Kapoor. Aaj ke din inka janm hua hai ji. He is 44 years of age. Several accolades including 7 Filmfare Awards. Known for his work across a range of film genres, Forbes India Celebrity 100 list, included in the annual Time 100 list of most influential people in the world in 2026. Of course, son hai Rishi Kapoor and Neetu ji ke, and grandson of actor-director Raj Kapoor sahab. Agar inki baaton kaam ka baat kiya jaye ji, debut aaya tha, ek film aayi thi Sanvariya 2007. Didn't do that well, but he got noticed, and then came the film Wake Up Sid, then Ajab Prem ki Gazab Kahani and political drama Rajneeti, and then Rockstar was the one that really flew things up for him, and then Arfi. A very happy birthday to this talented actor from the team here at Fun Asia. Time for that giveaway, jiski maine baat ki thi ji, and that is coming from Mirage Hookah Lounge. This is located in McKinney. Make sure when you are answering my question, you are able to go to McKinney and enjoy this. What are you getting? You're going to get $20 off. Jab aap $50 kharchenge, uspe aapko $20 ki bachat absolutely milegi, and that is for you right here in the heart of McKinney. Khane ke saath saath, the premium hookahs, cocktails, live music. Great ambience, and I'm sure you're going to have a gala time. मैं पूछने लगा हूँ आपसे एक सवाल, गलत सही जवाब कोई भी नहीं है, मैं एक specific answer ढूंढ रहा हूँ, but I'm going to be okay with your creative answers as well. अगर एक ईगल बीमार हो, है ना, एक अगर ईगल बीमार हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? What will you call an eagle that is बीमार? उसको हम किस तरह से बुलाएंगे? Is there something specific we can call them? Do lucky winner jeetenge ji $20 off your $50 bill from Mirage Hookah Lounge. Ek bimar baaj ko kya bolenge? Call karke batao. 972-235-5555. I'm choosing two lucky winner. Alright, Sahil बाद में आएगा भाई. Sahil मेरा दोस्त है, वो फ्लाइट स्टूअर्ट है आजकल जहाज में है, तो Sahil की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमारे पास कोई है, करते हैं इनसे बात. गुड इवनिंग Fun Asia, आपका नाम?
1: नरेंद्र बोल रहा हूँ.
0: नरेंद्र, मैं अच्छा हूँ. मोदी साहब ठीक है?
1: हाँ सब बढ़िया है.
0: हाँ नरेंद्र, वो एक लड़का है यार छोटा सा, उसकी आवाज मोदी जैसी है, देखिए आपने देखा उस बंदे को?
1: हाँ हाँ देखा है.
0: आपकी आवाज वैसी क्यों नहीं यार, कोशिश किया करो आप भी.
1: बिल्कुल कोशिश करेंगे.
0: कहो कहो कहो, मेरी आवाज ही मसा मसा तब निकलती है जब मैं गाड़ी में होता हूँ, आवाज कहाँ से निकालू, शादी हो चुकी है.
1: अच्छा भाइयों और बहनों,
0: भाइयों और बहनों, नरेंद्र साहब बताइए फिर, अगर एक बाज बीमार हो जाए उसको क्या बुलाएंगे?
1: इलीगल.
0: क्या बुलाएंगे?
1: इलीगल.
0: यार तुम तो बहुत आगे की बात करते हो यार, यू आर वेरी फास्ट मैन. होल्ड द लाइन फॉर मी, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं. गुड इवनिंग Fun Asia, आपका नाम?
2: माधव.
0: माधव कैसे हैं?
2: बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ बड़े भैया, सब ठीक ठाक. क्या कहेंगे सर उस बीमार ईगल को?
2: तो बीमार मतलब ईगल, मतलब ईगल, तो सीगल बुला सकते हैं.
0: सीगल?
2: या
0: सीगल बुला सकते हैं. अच्छा एक बात और बताओ कि एक रानी है जी, अगर दरवाजा खटखटा रही हो तो उसको क्या बोलेंगे?
2: नौकरानी.
0: अरे देखा क्या बात है मेरे भाई, होल्ड करेंगे आप, आई टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर. हाँ जी नौकरानी तो बोलेंगे कि नौक कर रही है, रानी है, नौकरानी हुई. चलो एक और बात बताता हूँ आपको, पता है तालिबान में ताली बजाना बैन है, क्यों? क्योंकि वहाँ तालिबान है ब्रो. और आपको ये भी पता नहीं होगा कि बाइक खड़े खड़े कभी कभी क्यों गिर जाती है, आपने देखा है साइकिल कभी खड़े खड़े गिर जाती है? वो इसलिए गिर जाती है भाई, बिकॉज इट्स टू टायर्ड यू नो. दो ठीक है,
3: पुरानी जानकारियां तो कंपनियों को चाहिए होती हैं, मोहब्बत अपनी नई दास्तान लिखती है.

यार हिमेश को सुनिए आप जरूर, बट नरेंद्रा भाई और मधु माधव कॉल तो करो, आपको गिफ्ट चाहिए तो मेरे से थोड़ी बात करनी पड़ेगी ना दोस्त।

0: मेरे को लगता है वो ज्यादा बेटर था। इसमें कोशिश जरूर की है हिमेश साहब ने वापस आने की, पर वो बात नहीं बनी। वो जो उसकी बात अलग थी। जैसे अब वो आते हैं ना, एक लंबे बालों वाले गंजे हैं, वो जो मर्जी कर लें पर उनका लोटा लोटा लोटा लोटा लोटा वो सबसे यूनिक रहेगा। क्यों? अभी आया।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the

It is your evening drive time show जिसका नाम है जी द बिंदास शो ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. मंडे की शाम है जी सितंबर 28th and I'm going to be with you till 7 o'clock this evening. बारिश कल हमने थोड़ी सी देखी and I was really happy to see some rain coming in. And आज कह रहे थे कि बारिश आज होगी बट अब लगता है कि बारिश जो है इस हफ्ते हमारे को वेंसडे से लेके संडे तक साथ नहीं छोड़ेगी. दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर नाउ. वेंसडे देयर इज 75% चांस ऑफ रेन. थर्सडे अगेन क्वाइट हाई चांसेस. फ्राइडे क्वाइट हाई चांसेस. सैटरडे इज वेल एंड संडे वेल दैट ब्रिंग्स द टेम्परेचर डाउन एज वेल. वेंसडे का हाई होगा 89. Thursday we're looking at 80, Friday 77, 79 and 78 for Sunday. That is your weather forecast and this is brought to you by Himalayan Bazaar, jo ki located hai aapke liye Grand Prairie mein, a brand new grocery store for you guys that features of course everything that we expect from a grocery store, chahe frozen aisles ho ya ho fresh vegetables and fresh produce and fresh fruits. They also have a great meat section that allows you to pick up your halal meats. And my Nepali brother and sisters, kaise ho Ramro? Dhare Ramro. Aapke liye wahan pe water buff bhi available hai. In the evenings after 5 PM, you get to get garam garam chai and that coffee with some garam garam pakode and samosa. That is Himalayan Bazaar in Grand Prairie, located right at the intersection of Highway 20 and Highway 360. It also serves people that live in Mansfield, Arlington and Grand Prairie. So, you don't have to drive far. Ab wo bahut koson dur aapko nahi jana padne apne dada ki tarah. Jab unko jana padta tha kai dur cycle pe, to aapko nahi jana. And if you are in a 5-mile radius from their store, then you get your groceries delivered for free. $50 se upar ki grocery aapke ghar pe absolutely free aa jayegi. So, look up Himalayan Bazaar. See how far you are. Check it out and get that savings going. Because, let's accept the fact, yaar. जहाँ कुछ बचे हमारे पैसे वहाँ तो हमें हमेशा अच्छा लगता है. नहीं, आई एम गोइंग टू प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक. उससे पहले ये मैंने कहावत बहुत सुनी है कि सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है. मुझे लगता है मेरा ना जो ऊपर वाला है वो जूस बना रहा है, क्योंकि मुझे तो अब तक मिला नहीं फल फूल यार. बट दैट्स ओके, मे बी ही इज मेकिंग अ मिक्स फ्रूट जूस फॉर मी.

Moni Roy is also celebrating her birthday today. You saw her in this movie, jiska naam tha Veda. She was in this track, Mummy Ji. And today marks the birthday of this daughter of the Mummy Ji, jinka naam hai ji Moni Roy. Born on 28th of September 1985. Indian actress, jinhone Hindi filmon mein kaafi kaam kiya. And highest paid television actress reh chuki hai India mein. Widely known for her portrayal of नागिन बनी थी 2015-2016 में, उसके बाद नागिन 2 में आई थी एंड उनको मिला कुछ अवार्ड जिसमें हैं आईफा अवार्ड एंड 2 आईटा अवार्ड एज वेल एज नॉमिनेशंस फॉर 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स. कूच बिहार वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी. ऑल्दो हमारी उम्र आसपास की है, ये 85 है, मैं 84 हूँ, परफेक्ट मैच होना था बट मैं बंगाल जा नहीं पाया कभी, घर वालों ने भेजा नहीं, ये कभी चंडीगढ़ की साइड नहीं आए. और जब मैं छोटा था तब मैं निकल गया था इंग्लैंड, तो बस रह गया Moni जी आपसे मिलना. कोई बात नहीं, अगले जन्म में शायद फिर कभी मुलाकात हो. मतलब मैं फिल्म में हीरो हो सकता हूँ, आप हीरोइन बन सकती हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है लाइफ में. सास भी कभी बहू थी, उस पर भी नजर आई थी जी. एंड ऑफकोर्स उसके बाद फिल्मों में बहुत सारा काम. टुडे मार्क्स हर बर्थडे. वेस्ट बंगाली ब्यूटी, 41 ईयर्स ऑफ एज. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस Moni Roy फ्रॉम द टीम here at Fun Asia. And from Banda Bindaas, ek naya gana aaya tha yaar, I really wanted to share that with you. It is Hadika Kiani and she's a Pakistani artist, a wonderful soulful Sufi singer. Aur unka ek naya gana hai which is called Ki Puchdeo Haal Fakiran Da. It's a beautiful, main bolunga nazm hai. Aur isko aap suniye, Shiv Kumar Batalvi sahab ne likha tha isko. And I would love to hear that with you all. Maine suna nahi hai, but I wanted to share it and listen to it with you all. Here we go, Hadika Kiani with the track Ki Puchdeo Haal Fakiran Da, writing none other than Shiv Kumar Batalvi sahab.

0: तो शेर खुल गया है तो कोई जू वालों को कॉल करके बुलाओ, नहीं तो खा जाएगा शेर किसी को। आपको पता है जो हमारे पीछे बातें करें हम नहीं करते माइंड, जो हमारे पीछे बातें करें हम नहीं करते माइंड, हमें सब पता है कौन कैसा है। वी आर नॉट।
1: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
11: Yaar, festival season aa raha hai aur meri wife ne shopping list bhi de di hai.
12: Kitni lambi list hai?
11: Bas 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी।
12: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
13: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
14: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
15: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
14: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
15: वो पता नहीं।
10: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाई रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन। With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
14: Ab hui na smart marketing.
10: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
16: Smart Reach AI, a Pan Asia Network product.

0: बातें करता बड़ी खास है जी, और पांच से सात रहता हमारा साथ है जी। दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। इट इज 6:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, यानी कि 6:25। एंड यू नो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, क्योंकि जो हग एंड हग इट कैन मेक यू फील रिफ्रेश फ्रेश एंड स्ट्रेस फ्री। हिंदी में या इंग्लिश में इट यू नो अच्छा, हमारे देशियों में ना अलग ही ट्रेंड है। मतलब जहाँ आप कहीं और कंट्री में जाओ, वहाँ पे अगर कोई ज़्यादा पी लेता है तो उसको बोलते हैं हे बडी आई थिंक यू शुड गो होम यू ड्रंक। हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं भाई घर मत चला जियो, तूने पी रखी है।
1: थवरा है ये लोभी है होशियार है, तो तुम खोटे इसके तो भारी तलवार है।
0: और याद आया मुझे इसी बात से कि ना वैसे जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, जोक्स अपार्ट, बंदे को ना वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ उसकी इज्जत नहीं होती। यू नो, एक देखो रिक्शे वाला भी है, वो भी अपने बच्चे को ना समझाता है कि बेटा ईमान की रोटी खाया कर, मैं सारा दिन रिक्शा चलाता हूँ ताकि तू पढ़ सके, तू कुछ कर सके, मजदूर है। वो भी यही करता है बेचारा, मेहनत करता है, पर अपने बच्चे को बताता है कि नहीं बेटा कभी गलत काम नहीं, सब काम अच्छे करने हैं, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना। नहीं, मुझे ये बताओ कि अब बंदा अपने घर भी ना जाए। आप लोग भी अगर घर जा रहे हैं तो गाने में अच्छे अच्छे लगाऊंगा जी। टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ दिस वंडरफुल आर्टिस्ट स्लैश ह्यूमन बीइंग लता दीनानाथ मंगेशकर जी, जिनका जन्मदिन आज ही के दिन हुआ है जी, 28th of September इन द ईयर 1929 इंदौर में इनका जन्म हुआ था। एंड समबडी हुज गिवन countless years to the Bollywood industry, such a beautiful voice. Sub, I mean, कितने गाने हैं यार, Queen of Melody, Voice of the Millennium इनके कुछ खिताब हैं, and हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, उसके अलावा तीन और languages, यानी कि 6 languages में भी गाने गा चुकी हैं, and बहुत सारे honors, बहुत सारे awards, और of course पूरी दुनिया का प्यार। दादा साहिब फाल्के अवार्ड है उनके पास, भारत रत्न है, फ्रांस मेड हर एन ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर एंड द कंट्रीज हाई सिविलियन अवार्ड, बहुत सारे इनाम। पर मैं क्या बोलूँ यार, ये एक ऐसी आवाज़ जो हमारे साथ हमेशा रहेगी रिगार्डलेस ऑफ हर पासिंग अवे इन 2022। एंड 4 साल हो भी गए, पता भी नहीं लगता वक्त कैसा निकल गया, बट वी आर रिमेंबरिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस वॉइस जिन्होंने दी हमें countless गाने। And this part of the show is brought to you by none other than SFL Worldwide. If you're looking to send gifts this festive season, desi outfits ho, mithai ho, namkeen ho, all of your favorite goodies, bring them home with SFL Worldwide. Door se aapke pick up kar lenge aur door tak pahuncha bhi denge. Ocean shipping hai, available for larger items, jaise ki wo puja wala mandir jo bhabhi kitni der se mang rahi hai, kyun nahi dilate? SFL Worldwide को कॉल करें, वो आपके लिए ले आएंगे। जो झूला आपकी बेटी ने मांगा हुआ है वो लकड़ी वाला, वो भी वहीं से मिलेगा। शिपिंग एंड मूविंग विद इन द US फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, और सेंडिंग एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, SFLWorldwide.com इज द प्लेस यू गो टू, और गिव देम अ कॉल 1-800-691-2335। फॉर नाउ इट इज सेलिब्रेटिंग द वॉइस एंड द लेगेसी ऑफ लता मंगेशकर जी।

0: और आपकी दास्तां ऐसी दास्तां हैं लता जी जो ख़त्म तो नहीं होगी और हमेशा आप याद तो आएंगी, चाहे शाम हो, दिन हो, रात हो, जब भी बॉलीवुड म्यूज़िक की बात होगी, जब भी अच्छे संगीत की बात होगी, लता मंगेशकर जी का नाम उसमें सबसे ऊंचे दर्जे पर ज़रूर आएगा।
1: सुर में गाना था।
0: सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ लता जी, 28th ऑफ सितंबर 1929।

0: Once again, wishing Lata ji a very happy birthday on her birthday, although she's no longer with us, but she's never going to leave us because unki awaaz aur unka sangeet hamesha hamare saath saath rahega. It's time to get you some information about what's happening in the world of insurance, and to do that, hamare saath judti hai Humaira Jumani with the Sinada Inc. SENADAINC.com is that website, SinadaInc.com, and she comes to give us what's happening in today's update. Let's find out what is going on in the world of insurance. Good evening, Humaira ji. How are you and what is today's update?
1: Good evening. I am doing good. Today's update is there are a lot of dates that we need to remind everyone that enrollment is coming up for Medicare starting on 15th of October, ending on December 7th. If somebody wants to change or update their Medicare Advantage plan or prescription drug plan, that's the right time to do. Then health insurance open enrollment is coming up. It's starting on November 1st, ending on December 15th for the effective date of January 1st. They can call me or my team and we can assist them to enroll for 2027 because there are so many changes coming up and they need to contact the right people who can save their money and enroll them in the right plan. The number to contact is 972-863-7772, 972-863-7772. The website is
0: SENADAINC.com. That is SENADAINC.com for you. 972-863-7772 is that number. And she rightly said, when the open enrollment comes, that is your opportunity to avail some great deals on medical insurance, especially if you have parents that are older. Unki sari sahulatein unko mil sakti hain, from even pick up and drop from their home whenever they have to go to a clinic. Their medications all covered under that plan. Doctors' visits, any of their surgeries, all of that can be covered. But for that, you have to get in touch with Sinada Inc. and Humaira Jumani's team. 972-863-7772. You know, I've heard it say, if you can laugh at your own mistakes, you live longer. If you can laugh at your own mistakes, you live longer. But agar bhabhi ki galti pe aap hans liye na bhaiya, to phir रब रखा।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
6: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
7: डील कहाँ?
6: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या। डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट सिग्नेचर क्विजिन.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
12: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on October 31st at the Sound Venue in Coppell. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: Wishing Lata ji a very happy heavenly birthday once again. You're listening to the Evening Drive Time Show. Welcome back to the last segment of this evening show, 5 to 7 p.m. मैं आपके साथ रहता हूँ जी. It's 6:46 on the studio clock. 6:46. That means के वक्त हो रहा है जी मेरा वापस घर की तरफ निकलने का. बट आपको कुछ कुछ और बातें और कुछ कुछ और गाने सुनाता हुआ जाऊंगा. पहले तो ये बता दूं, India's most loved Hoko is back in full swing in America now. America आ गया था मेरे, पंजाबी आ गया था बाहर, पंजाबी आ गया, रुक जा. तो अमेरिका अमेरिका आ चुका है जी Hoko, जिन्होंने बहुत सारा हल्ला मचा रखा था इंडिया में बिकॉज ऑफ देयर फूड. कहते हैं जी कि इनका चना पूरी अगर आपने नहीं खाया, सैंडविच नहीं खाए, करीज नहीं ट्राई करी, एंड अगर लेजेंडरी कोल्ड कोको नहीं ट्राई किया, यू नो दिस इज द रीजन. ये जो लेजेंडरी कोल्ड कोको है ना, ये सिद्धू साहब ने पी लिया था. जैसे ही सिद्धू साहब ने पिया कोल्ड कोको, उनके मन से आवाज आई ताली ठोको, तब से ये कोल्ड कोको फेमस हो गया. मतलब ताली ठोको सिद्धू जी का फेमस हो गया. नाउ यू नो कि वो सिद्धू जी ताली ठोको क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने Hoko दा कोल्ड कोको पीता सिखा यार. स्टूडेंट्स गेट 20% ऑफ विद अ वैलिड आईडी एंड इफ यू आर एम्प्लॉयड 9 to 5 के बीच में अगर आप जाएंगे वहां मंडे थ्रू फ्राइडे, आपको मिलेगा 20% ऑफ एज वेल. सो 20% ऑफ फॉर स्टूडेंट्स विद अ वैलिड आईडी एंड एम्प्लॉयज गेट 20% ऑफ मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ऑन देयर लंच पैक्स. ये लोकेटेड है जी 2693 प्रेस्टन रोड स्वीट 1000 इन फ्रिस्को. Visit the menu on the website hoko.us. That's HOCCO. Isi baat pe Hoko ke liye taali thoko.
1: Kuch bhi ho jaye, hum apna banga ko chhodkar nahi jata hai. Hai, hai, hai.
2: Bhai jaan, hum to fidain hai.
3: Arey, ghante ka fidain hai tum.
4: Utni ka bhagne na paaye.
5: Got a phone.

0: कुछ समझ में नहीं आया। फिर से सुन।
1: बाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, दाएं के सीधा जाके दाएं पुरु, थोड़ा आगे बाएं के सीधा जाके दाएं के, दाएं के बाएं के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।
2: भागने ना भागने ना पाए, अगर तुम कहीं जाए पत्नी क्या हो गया इनको। यार बड़ी चेते चिका रहे थे भाई, ये गाना आया जी फ्रॉम द फिल्म उड़ता तीर। आयुष्मान खुराना ने पकड़ लिया इस तीर को, सारा अली खान साथ में होंगी, सचिन जिगर का म्यूजिक है एंड गाने का नाम था भूतनी का भूतनी का पत्नी क्या। भाई इनकी मर्जी, आजकल बड़े क्रिएटिव हैं बड़े लोग यार, मतलब लिखाई क्या बात है, क्या बात है ना। वो बादशाह भी लिखते हैं किताब है, पता नहीं क्या, मैं होने लगा फेमस, बाकी आप सबको पता है। यू आर गोना बी लिसनिंग टू आफ्टर मी, आएंगी जी इपी द हिपी, शी इज गोना एंटरटेन यू फ्रॉम 7 to 10 PM, व्हाट अ लवली शो शी पुट्स अप। बट जाते जाते बता दूं, टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ नायोमी वॉट्स, who's a movie actress, September 28th, 1968, she was born, and if you don't remember her, तो याद है King Kong आई थी ना 2005 में, उसमें ये थी as a lead actress, she won the Academy Award nomination for her performance in 21 Grams as well, and the movie called The Impossible. She's also known for her roles in films like Mulholland Drive, I Heart Huckabee's, Birdman, and The Ring. A very happy birthday to Naomi Watts, and my schoolmate and my elder brother, the Olympian from India, Abhinav Bindra, is also celebrating his birthday today. Born on 28th of September 1982. Indian former sports shooter hain, businessman hain, Olympic gold medalist, as well as the first and only two Indians to win an individual Olympic gold medal. Bindra is also the first Indian to have held concurrently the world and Olympic titles for the men's 10-meter air rifle event, having earned those in honors at the 2008 Summer Olympics and 2006 World Championships. He is from the same school as me, St. Stephen's School, Chandigarh. और ये मेरे से 2 साल सीनियर थे, ही वॉज माई ब्रदर्स क्लासमेट, मार्टिन भैया के क्लासमेट थे और हमारे दोस्त हैं। अभिनव जी आपको जन्मदिन की बहुत मुबारक, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट गोल्ड टू इंडिया एज वेल। आज ही के दिन अगर मैं बात करूं एक और चीज़ की, उससे पहले बताना चाहूँगा आपको अबाउट बीइंग हेल्दी एंड फिट, एंड इफ़ यू हैव पेरेंट्स जो बार बार कंप्लेंट करते हैं कि यार मेरे गोडे में दर्द है, मेरी पीठ अकड़ जाती है, मुझे लगता है कि मेरी हिप में कोई इशू है। फॉर 13 ईयर्स टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी हियर इन डैलस, एंड दे आर Texas Star Rehab is the place that I want to recommend you. Texas Star Rehab, they've taken care of people in DFW for a very long time. इनकी दो locations हैं, एक location Frisco में है, एक location Irving में है. करते क्या हैं? They have a full service physiotherapy location that offers physical therapy, sports rehabilitation, pelvic floor therapy, massage therapy and more. सबसे अच्छी बात, one-on-one care के साथ आपका ख्याल रखते हैं. And the practitioner who runs this facility, उनका नाम है रूशी, he is a physiotherapist himself and also the physiotherapist for Mumbai Indians, New York, the MLC team. Also has worked on many sports celebrities like Sachin Tendulkar and हमारे Rawalpindi Express. And if you are going through joint pains, aches in your body, which you feel कि एक पेन किलर खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, don't do that for yourself. Don't give your parents the painkiller. Get to Texas Star Rehab and Performance Center. Get with Rushi. He will give you a diet plan which is all natural. He'll tell you exercises which are all natural, and you'll be able to get away from that pain without any over-the-counter medications. TexasStarRehab.com is the website. TexasStarRehab.com. Today in history, another thing happened, and that was this.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी. स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया.
3: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास साइमलकास्टिंग.